सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 2, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: जीवन में हमारा लक्ष्य चाहे कितना भी दूर हो और हमारी चलने की गति कितनी भी मंद क्यों ना हो, निरंतर चलते रहने से हमारी लक्ष्य सिद्धि निश्चित संभव है। व्यक्ति अपने जीवन में कई उद्देश्यों के साथ कई लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उन्हें पाने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त कर व्यक्ति जीवन में अपनी अर्थवत्ता, गुणवत्ता और आत्मतुष्टि का प्रसाद प्राप्त कर। व्यक्तिगत स्तर पर जहां मानव अपने सपने सच होने का सुख अनुभव करता है, वहीं वह समष्टि के स्तर पर एक खुशहाल समाज और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना स्वाभाविक योगदान भी करता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है कि अपने जीवन को सम्मानजनक एवं उन्नत बनाने के लिए अपनी जीवन शैली में उन्नतिप्रद लक्ष्यों की ओर निरंतर चलते रहने की आदत बनाए रखें। कभी कभी हमारे लक्ष्य हमारी पहुंच से परे लगने लगते हैं। यद्यपि हमारी आंतरिक लालसा होती है कि हम उन सारी चीजों को प्राप्त करें जो हमें सुख और खुशी दे सकती है, तथापि लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते की लंबी दूरी और साधन की तुच्छता देखकर कई लोग धीमे चलना बंद कर बीच में ही रुक जाते हैं। वे आगे बढ़ने का प्रयास ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से तो मनचाही मंजिल तक पहुंचने की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। ये बात हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है अगर हम धीरे धीरे ही सही किंतु बिना रुके और बिना प्रयास छोड़े मंजिल की दिशा में बढ़ते रहें तो आज नहीं कल ही सही पर अपने लक्ष्य को पाना असंदिग्ध रहता है। रुक जाने वाले तो अनजाने में ही बस एक कदम भर की दूरी पर मंजिल से वंचित रह जाते हैं। एक कदम चलने की कोशिश कितनी मूल्यवान है ये बात समझी जा सकती है। ऐसी किसी भी अनचाही संभावना को हम निर्मूल कर सकते हैं। हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम कभी भी समस्याओं से संघर्ष में मनोबल को टूटने नहीं देंगे। हार कर अपने कार्य सिद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास को छोड़ेंगे नहीं। परिस्थितियों को देखते हुए गति भले ही मंद कर लें किंतु आगे बढ़ने का प्रयास कदम दर कदम जारी रखेंगे। अगर हमारा प्रयास अनवरत जारी रहता है कोई भी बाधा हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो पूरा ना किया जा सके, कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां हम पहुंच ना सके। ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें और तेज गति वाले उस लक्ष्य तक कम समय में पहुंच जाएं। वे मंजिल तक पहले पहुंचे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सफलता के सच्चे सुख की अनुभूति बहुत व्यापक और समय की सीमा से परे होती है। कुछ देर बाद ही सही जिन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है वे भी उस मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं और सफलता की दिव्य खुशी अवश्य अनुभव करते हैं। हमें इस क्रम में एक कमजोरी से सतर्क अवश्य रहना चाहिए, वह है आलस्य। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्य की सुगमता की बात सोचकर हम अति आत्मविश्वास में कुछ समय के लिए अपने प्रयास को विराम दे दें कि इसे तो हम कभी भी पूरा कर सकते हैं। ये बात हमारे लक्ष्य की सिद्धि में बाधक हो सकती है। संसार की परिस्थितियां क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। वे परिवर्तित परिस्थितियां हमेशा हमारे प्रयास के लिए अनुकूल ही हो ये आवश्यक नहीं। अतः अपने कार्यरण नीति के अंतर्गत हम अपना प्रयास कभी धीमा करते हैं, मार्ग परिवर्तित करते किंतु उन्हें कभी भी बंद ना करें। अपने उद्योग में लगे रहने से, निरंतर मंजिल की ओर बढ़ते रहने से मनुष्य को अपने अंदर से एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक नए विश्वास का संचरण होने लगता है। आशा की नई किरण आगे आगे मार्ग आगे

0: आलोकित करती, हमें आगे बढ़ते जाने को प्रेरित करती है। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी तो निरंतर हमें अपनी गति से चलते रहने की ही प्रेरणा देते हैं, रुकने की नहीं।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। फूल वाले पौधे और शोभाकार पौधे जो होते हैं उनकी खेती आप व्यावसायिक रूप से करते हैं। कुछ लोग नर्सरी इसकी तैयार करते हैं, गमले में पहले उगाते हैं या छोटे छोटे पॉट में इन्हें उगाते हैं, उसके बाद बाज़ारों में बेचते हैं। कुछ लोग या शहरों में रहने वाले जो प्रायः लोग होते हैं वे शोभाकार पौधे और फूल वाले पौधों को जो है गमलों में लगाते हैं, बालकनी में, आंगन में या खुले स्थान में उसे रखते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं, उसे फूल वगैरह भी प्राप्त करते हैं। तो गमले में जो पौधे लगाए जाते हैं उनके प्रति कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है। गमले में किस तरह की मिट्टी डालें ये भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग गमले में यदि चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसमें पौधे सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करें। यदि आपको लग रहा है कि मिट्टी बलुई नहीं है तो उसमें थोड़ा सा बालू भी मिला दें ताकि हवा का जो है संचार जो है गमले की मिट्टी में आसानी से होता रहे। दूसरी बात ये होती है कि गमले में आप मिट्टी डाले, पौधा लगा दिए, फिर लगातार सिंचाई करते रहते हैं। लगातार पानी देने से ये होता है कि मिट्टी बैठ जाती है, हवा का संचार कम होता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे में सिंचाई करना आवश्यक होता है लेकिन अधिक सिंचाई करने से हानि भी हो सकती है, इसलिए आप सोच समझकर जब पानी की कमी हो तभी सिंचाई करें और मिट्टी जो है उसकी खुदाई हरदम खुरपी से करते रहें ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और हवा का संचार, वायु का संचार होते रहे ताकि आपके पौधे जो हैं वे स्वस्थ रहें। कभी कभी आप देखते क्या हैं कि पौधे जो है जड़ से गलने लगते हैं, उनमें फफूंद का आक्रमण हो जाता है, फंगस के कारण पौधे गलते हैं। खास करके नागफनी के पौधे या अन्य पौधे जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ये समस्या होती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि गमले में जब आप मिट्टी डालें उस समय ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है, इसकी किस्म होती है ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको आप गमले की मिट्टी में मिला दें या जब गोबर की खाद आप गमले की मिट्टी में डाल रहे हैं उस समय मिला दें तो उससे क्या होता है कि फंगस का आक्रमण कम होता है या नहीं होता है और उससे जो है आपके पौधे बचे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब गमले में पौधे लगे होते हैं तो आप ध्यान दीजिए, गमले के नीचे एक छेद होता है, वो छेद मिट्टी से जब भर जाता है तो पानी जब आप डालते हैं तो पानी नीचे की तरफ पास नहीं करता है, बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण कि पौधे को समस्या होती है, पौधे गलने लगते हैं। ज़्यादा पानी आप देते हैं तो उस सुराख को जो है वो साफ रखें ताकि पानी जो है वो निकलते रहे। अब यदि आप गमले में गुड़हल का पौधा लगाए हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि सफ़ेद रंग के धब्बे जैसा पदार्थ, लसलसा पदार्थ जो है ऊपर से नीचे तक लग जाता है पौधे की टहनियों पर। यदि एक या दो टहनी पर ऐसा हो तो टहनी को आप काट करके फेंक सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा इसका आक्रमण हो जाए तो ध्यान रखें कि ये रुई की तरह जो पदार्थ जमा है पौधे के ऊपर ये कीड़ा होता है, अंदर इसमें कीड़ा होता है। तो घर में यदि आप गमला लगाए हुए हैं, बालकनी में लगाए हैं तो उसमें तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करना अत्यंत ही हानिकारक है। आप ऐसा करें कि जो पाइप है, सिंचाई करने वाली पाइप जो होती है जिससे पानी आता है, उसकी तेज धार जो है उसके ऊपर डालें, कीड़े नीचे गिर जाएंगे, पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा। उससे भी यदि काम नहीं बने तो घर में काकरोच मारने वाली जो दवाई आती है, स्प्रे आती है, उसका हल्का सा स्प्रे कर दें तो उससे भी ये कीड़े मर जाते हैं और आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से गमले में लगाए गए पौधों की देखभाल करके आप उनसे लाभ ले सकते हैं।

0: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स

0: हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मेरे कान्हा तेरी रहमत की भीख मांगते हैं हम,

मेहरबान कोई न तुझसा है यह जानते हैं हम, बस तू ही है सुनने वाला फरियाद टूटे हुए दिल की, इसलिए दामन फैला कर तेरे दर पर चले आते हैं हम।

भगवान एक ही है। भगवान के पास बैठने से हमारा भी देवत्व विकसित होता है, ठीक वैसे ही जैसे पारस की समीपता से लोहा भी सोना बन जाता है। भगवान का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए, सच्चे मन से श्रद्धा से उन्हें याद करना चाहिए।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर उत्तरा केलकर का है।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहों ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर उत्तरा केलकर का था। और आकाशवाणी पटना से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य सूचनाएं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विकास कुमार। आप पटना के जाने माने अस्पताल में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और सभी श्रोतागणों को प्यार भरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, किडनी जो कि हमारे शरीर का एक काफी महत्वपूर्ण एक अंग आप कह सकते हैं, कई बार इसमें समस्या आ जाती है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किडनी के जो रोग हैं उसके क्या कारण हैं।
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंसिडेंस या प्रिवेलेंस की बात करें तो लगभग 10% लोगों में किडनी की बीमारी पाई जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है इसके प्रिवेलेंस या इंसिडेंस बढ़ते जाते हैं।
1: जी,
2: तो कारण मुख्य रूप से अगर देखें तो 4-5 हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से किडनी खराब होती है और यह आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज में ले जाता। इसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्टिव चीजें हैं लाइक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसकी वजह से परमानेंट किडनी का डैमेज होता है।
1: जी जी,
2: कुछ ऐसी चीजें जो आपके मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा करती है, जैसे स्टोन हो या प्रोस्टेट हो या ट्यूमर हो, इसकी वजह से भी किडनी खराब होती है।
1: जी,
2: इसके अलावा अगर आप देखें तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है किडनी खराब होने की तो आपकी किडनी खराब होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे।
1: जी,
2: इसके अलावा VUR कोई रिफ्लक्स डिजीज अगर आपको है तो यह भी आपकी किडनी को खराब कर सकता है।
1: धूम्रपान और जो नशे की जो लत है, क्या ये भी प्रभावित करता है किडनी की बीमारी में?
2: यह एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो आपके किडनी को अफेक्ट करता है।
1: जी जी, आजकल जैसा कि हम लोग देखते हैं मानसिक तनाव और काम का प्रेशर रहता है, उसमें लोग कम पानी पीते हैं, तो ये कितना कारक हो सकता है?
2: देखिए, ऐसे जो किडनी जो खराब होने की बात है उसमें पानी पीने का जो रोल है,
1: जी जी,
2: ये ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टोन बनने की समस्या अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो जरूर हो सकती है, जो आपको बाद में किडनी खराब कर सकता है।
1: तो किडनी के कारण में हाई BP और
2: शुगर,
1: ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कारक है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। कई बार होता है लोगों को पता नहीं चलता है कि मुझे किडनी से संबंधित समस्या है, तो कुछ ऐसे लक्षण जिसको अगर हमें ऐसा महसूस हो ताकि हम जल्द से जल्द इलाज करा सकें।
2: किडनी के मरीज जो है जनरली जो है वेग सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसको लेके आते हैं, जैसे उल्टी, मिचली, कमजोरी लगना, थकान लगना। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनको पूरे शरीर में दर्द होना, इसके साथ ही आप देखेंगे उनको पैरों में सूजन होना या फेस में सूजन आ जाना, ये सारे लक्षण आपको बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम हो रही है।
1: जी जी, दर्द की आपने बात की तो किस प्रकार के शरीर में, हड्डी में दर्द या मांसपेशी या नसों में दर्द?
2: हाँ, दर्द जो होती है कॉमनली ऐसे जो हम लोग बोलते हैं मसल क्रैम्प, तो ये आपके मांसपेशियों में दर्द होती है जनरली। अगर किडनी का मरीज है, आपके स्किन्स ड्राई हो जाएंगे, तो जो दर्द है उसे आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि मरीज को किडनी का ही बीमारी है, लेकिन अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं
1: तो एक संभावना बनती है,
2: जो कुछ टेस्ट करा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं, इसे किडनी की ही बीमारी है।
1: तो मूलतः किडनी की समस्या के कारण में आप शुगर और हाई BP प्रधान तौर पर है। अगर लक्षण की हम बात करें तो अगर जैसा कि आपने बताया, अगर ऐसा कुछ भी लक्षण हमें महसूस हो तो अपने निकटतम जो भी चिकित्सक हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिले और तत्काल इसकी इलाज कराए, क्योंकि किडनी जो हमारे शरीर का एक काफी महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और किडनी के रोग के क्या कारण और लक्षण हो सकते हैं, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।

अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल।

7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा 10 बजे। 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुपम किशोर के स्वर में गजल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11 बजे से। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। किसलय ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। दो बजकर 10 मिनट पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। 'युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 4:30 पर। मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:30 पर। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे।

0: शाम 7:52 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आविदा परवीन के स्वर में गजल। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तिमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस

0: के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के

बारे में। आज के दिन जर्मनी के संघीय गणराज्य का गठन सन 1949 को हुआ था। 23 मई को जर्मनी के वर्तमान संविधान गुंडग्रेसेटेज की घोषणा हुई, जिससे गणतंत्र का जन्म हुआ। यह दिन पश्चिमी जर्मनी की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जो नाजी शासन के पतन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 4 साल बाद हुआ था। आज है विश्व कछुआ दिवस। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ने वर्ष 2000 में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यह दिन विश्व भर में कछुओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इन सरीसृपों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना और उनके आवासों की रक्षा तथा उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। विश्व कछुआ दिवस से व्यक्तियों और संगठनों को कार्यक्रमों का आयोजन करके, जानकारी साझा करके और संरक्षण पहलों का समर्थन करके कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो इन आकर्षक जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। और श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1951 में चीन ने तिब्बत का पूर्ण विलय कर लिया था। यह दिन तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के लिए 17 सूत्री समझौतों का था। इस समझौते ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता की पुष्टि की। जानकारियां तो अभी और भी हैं, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज की शख्सियत की बात करें तो आज के शख्सियत हैं बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिन्होंने सन 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। बछेंद्री पाल 23 मई सन 1984 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। उनका जन्म 24 मई सन 1954 को हुआ था। इस उपलब्धि के बाद बछेंद्री पाल को 2019 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बछेंद्री पाल का जीवन हमें यह सिखाता है कि मजबूत इरादों और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।

श्रोताओं, अब बातें कुछ स्वास्थ्य संबंधी। मई के महीने में भीषण गर्मी और लू हीट वेव से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें। हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। इस तरह अपना रखें ख्याल।

0: इसी के साथ कार्यक्रम हालचाल का अब वक्त होता है समाप्त।
1: इरादा है।

अभी आप शुभा मुद्गल की आवाज में सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित सी आर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन। विलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मंदे माहो, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं दलारियां। तबले पर इनकी संगति की है ओमकार गुलवाडी ने।

के बोल थे मंदे माहो, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध थी जिसके बोल थे दालारियां। तबले पर इनकी संगति की थी ओमकार गुलवाड़ी ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

अभी आप पंडित सी आर व्यास का राग भैरव बहार में ख्याल गायन सुन रहे थे। विलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध थी, जिस

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान

0: उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहतसे, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट UCC

0: mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert.

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकर्रुरशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12,00,000 तकर्रुरनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व ख़ानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो RBI की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला RBI के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। RBI ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमूई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में, जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं, 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तावुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफ़र करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज़, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनू जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफ्द को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क़याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावक़ार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें ये अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फ़िलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में ख़वातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फ़ौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फ़ौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कॉन्गो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैनुल अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट। ITBP की एक 14 रुकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खत्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबो हवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की ख़रीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज़्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज़ किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBI ने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालय, मगरबी

0: बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज़्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी, जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल खत्ते और बाहमी मफादात के बैन अवी मसायल पर गौर वखौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजाना इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज़्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोज़ा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: PIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन

0: ज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाए, वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद TRE4 को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
1: जुलाई महीने में TRE4 की वैकेंसी आ गई, तो TRE4 पर

0: पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
1: जुलाई महीने में टीआरई फोर की वैकेंसी आ गई तो टीआरई फोर पर स्थिति स्पष्ट हो गई। विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसका पूरा एक सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को सीएम साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000, यदि ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा भेज।
0: बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सुधा गोल्ड की कीमत प्रति लीटर 65 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर दी गई है। सुधा स्टैंडर्ड दूध 57 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गाय दूध 54 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और टी स्पेशल 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कॉम्फेड ने पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों की कीमतों में भी वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें 25 मई से प्रभावी होगी। साथ ही कॉम्फेड ने किसानों को प्रति लीटर दूध में 2 से 3 रुपए 13 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। खुदरा विक्रेताओं के लिए दूध के मुनाफे में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और पाकिस्तान से आतंकी संपर्क के आरोप में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। एटीएस के एडीजी पंकज दारात ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ।
2: इन पे मुख्य रूप से यह आरोप है कि एक सज्जाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना सोल्जर बनाना चाहता है। सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राणा हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है, तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार।
0: बिहार में अपराध की बदौलत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 1,433 अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें 428 की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के बाद मद्य निषेध उपायुक्त दरभंगा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित सिसवर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इधर केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नालंदा जिले के लहेरी से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र

0: से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.2, गया का 42.4 और बक्सर का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, पटना, गया और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
4: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
3: इधर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मंडल टोला में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सराफ की और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक उमेश सिंह कुशवाहा समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा की बिहार इकाई की ओर से आज से पटना में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। प्रशिक्षण महाभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। सिवान के जिलाधिकारी ने 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जांच के क्रम में अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। आरा जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले थे। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर स्थित एक गोदाम से 95 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर और गोदाम कर्मी को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मधुबनी जिले के पंडोल थाना क्षेत्र के सरिसब पाही स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के पास अपराधियों ने एक युवक से 1,40,000 रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के गोवर्धना और ठकराहा थाना क्षेत्र

0: हथियारों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 5 वर्षों में 1,00,000 नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर वर्ष जुलाई में आएगा विज्ञापन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, माता पिता IAS तो आरक्षण क्यों। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेब पर बोझ, 1 लीटर सुधा गोल्ड 3 रुपए और 200 ग्राम पनीर 10 रुपए महंगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 10 और IAS अधिकारियों का तबादला। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

यह है। इसके बाद हमारी जो अगली पेशकश होगी वो है मौसीकी, और इसमें हम आपको सुनवाएंगे चंद गज़लें। तो आइए इस तफसील के बाद हम कोई भी तखीर किए बगैर अपने इस महफिल का आगाज़ किए दे रहे हैं। लीजिए, आपकी समातों के हवाले है ये गज़ल, आवाज़ मुन्नी बेगम की है, आपकी समातों के हवाले।

0: मुन्नी बेगम की आवाज़ में सामीन आपने ये गज़ल समाअत फरमाई, एक बार मुस्कुरा दो। यकीनन ज़िंदगी में सबसे अहमियत और कीमती शय का दर्जा रखने वाली ये मुस्कुराहट बहुत ही आम नहीं है, जबकि इसे आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान मुश्किलों में, परेशानियों में, ज़िंदगी को गुजारते हुए, हालात से लड़ते हुए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फुकदान महसूस करता है वो ये मुस्कुराहट है। मुस्कुराहटों के ज़रिए इंसान अपने गम को भूल जाता है। हर इंसान अपने इस सफ़र में, जो ज़िंदगी का सफ़र है सामीन, इसमें मुशक्क़त के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और ये कुदरत का इंतज़ाम भी है। और ऐसे ही इस सफ़र में उसे जिन जज्बात की ज़रूरत होती है उसमें उखुवत और हमदर्दी, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान किसी मुश्किल से दोचार है और उससे उसे लड़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वैसे हालत में जो एतमाद बहाल करने वाली चीज़ है वो उखुवत और हमदर्दी है। अमीर बिनाई का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। और ये जज्बा तभी पैदा हो सकता है जब हम इस अख़ुवत और हमदर्दी के जज्बे से सरशार हों, क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसे किसी दूसरे को देंगे तो दूसरे की जानिब से हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे वक्त में भी ये हमें फराहम किया जाएगा। उख़ुवत और हमदर्दी जो इंसानी मुआशरे की बुनियाद के तौर पे तसव्वुर किया जाता है, और ये अमन और सुकून की ज़ामिन भी है। ये दोनों ऐसी खूबियां हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ती हैं, नफ़रतों को मिटाती हैं, और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। उख़ुवत यानी ब्रदरहुड, अगर हम कहें ज़ामिन, तो इसका मतलब है भाईचारा, यानी सब इंसानों के साथ मोहब्बत, मसावात और भाईचारे का रिश्ता कायम करना, यानी उसे ये यकीन दिलाना कि वो इस सफ़र में तन्हा नहीं है, उसकी ज़रूरत के वक्त पे हम साथ हैं। इसी तरह से इस माशरे में इसका जो असर होगा वो बाहमी एतमाद, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। और सिंपथी और एम्पैथी तो हम तमाम लोग जानते हैं कि ये जो हमदर्दी है ये उस वक्त मरहम के तौर पे काम देती है जबकि इंसान बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला हो जाता है और उसे बिल्कुल दुनिया अंधेरी तारीक दिखाई देती है। ऐसी हालत में उसे इस जज्बे से वापस उभारा जा सकता है। अगर ये जज्बा हमदर्दी अगर उसके साथ न किया जाए तो वह इंसान अपने आप को तबाही की तरफ लेके चला जाता है, और ये एक इंसान की मौत नहीं, एक इंसानियत की मौत होती है। यकीनन हमदर्दी का जो जज्बा है वो इंसानों के साथ साथ तमाम मखलूक के साथ करने की ज़रूरत है, और हम तमाम लोग इससे आगाह भी हैं और इसकी कोशिशें भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लेकिन आइए इस जज्बे को आम करें और तमाम तरह के गम तकलीफ़ों को भुलाकर एक दूसरे के साथ उखुव्वत और हमदर्दी के जज्बे को पैदा करने का अहद लें। आइए सामीन, हम इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद आपको अगली पेशकश की जानिब मुतवज्जे किए दे रहे हैं। लीजिए, आपकी समातों के हवाले है ये ड्रामा उनवान दोपहर के बाद।
1: घड़ी देखी है, 9 बजने वाले हैं और अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। साहब तुम्हें ही कच्चा खा जाएंगे।
2: अब क्या करें बेगम।

0: साहब 5 बजे सुबह से उठकर लगे हुए हैं। अकेले कौन कौन सा काम करें, किसी को बेड टी चाहिए तो किसी को स्कूल ले जाने के लिए टिफिन बॉक्स, किसी को सादी चाय तो किसी को नींबू की, और इधर अंगेठी अलग, और मेरी बुढ़िया की तरह रूठी हुई है ससुरी। अरे हम क्या करें?
1: अरे कुछ करोगे भी या बड़बड़ाते जाओगे? काम धाम तो करना ही नहीं, बस अल्लाह मियाँ ने गज भर की जबान दे दी है। 9 बजने में कुल 20 मिनट रह गए हैं और अभी तक साहब का नाश्ता तैयार नहीं हुआ। ठीक 9 बजे टेबल पर बैठ जाएंगे, तब तुम अपनी तकरीर शुरू करना। सलमा, ओ सलमा।
2: जी अम्मी, आई। अम्मी मुझे पुकार रही थी।
1: नहीं भाई, तुम्हें क्यों पुकारूंगी? पुकार तो रही हूँ अपनी किस्मत को कि एक पल चैन नहीं। अरे बाप की फिक्र भी है, उन्हें ऑफिस जाना है, उनके कपड़े ठीक कर दिए या नहीं, टाई इस्त्री होकर आ गई या नहीं, ए शर्फू जूते पर पॉलिश हुई है या नहीं। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, अकेली जान और एक साहब बहादुर है कि हर काम घड़ी के मुताबिक होना चाहिए। अरे सलमा तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? तौबा तौबा, जवान होने को आई मगर खानादारी से कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
2: अम्मी मेरा इम्तिहान है।
1: चूल्हे में जाए तुम्हारा इम्तिहान, पहले साहब की खबर गिरी करूं या तुम्हारे इम्तिहान की सोचूं? 2 मिनट की देर भी हो गई तो सारा घर सर पर उठा लेंगे। जरा उनके कपड़े तो ठीक कर दो, मैं नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ।
0: या अल्लाह, अरे यो अंगीठी खुदा के वास्ते जल जा। अरे आज ही धोखा देना था, ये कोयला भी हमारी किस्मत की तरह पत्थर है, पत्थर।
1: बस तुम यूं ही बड़बड़ाते रहो, 9 बजने ही वाले हैं, मैं तो अलग हो जाऊंगी, साहब से तुम निपट लेना।
0: अब कर ही तो रहे हैं बेगम साहब, बस आमलेट बनाना रह गया है और फिर चाय। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे बाप रे, मर गए, 9 बज गए बेगम साहब, 9 बज गए।
1: बस अब साहब टेबल पर आते ही होंगे। आज हुई आफत, 9 जैसा भी कोई वक्त का पाबंद हो, घड़ी के कांटे के साथ नाश्ता खाना सोना उठना। कुछ कहो तो मुझे ही नसीहतें होने लगती हैं। अरे तुम क्या जानो, घर की दीवारों में बंद हो, मैं दफ्तर जाता हूँ, ऑफिसर हूँ, अगर मैं ही पाबंद ना हुआ तो।
3: अरे ओ शर्फू, बेगम। अरे भाई कहाँ हैं सब लोग? 9 बजकर 2 मिनट हो गए और अभी तक डाइनिंग टेबल खाली है, ये क्या बदतमीजी है?
1: थोड़ी देर हो गई शर्फू, जल्दी नाश्ता लगाओ, साहब को देर हो रही है।
3: देर हो रही है नहीं, बल्कि देर हो चुकी, 9 बजकर 3 मिनट हो चुके हैं। मुझे नाश्ता करना है, कपड़े तब्दील करना है, 9:30 बजे ऑफिस के लिए रवाना होना है। आज ऑफिस में 3-3 मीटिंगें हैं, मैं क्या तुम लोगों की तरह बेकार हूँ? वक्त की कोई कीमत ही नहीं है, मैं कहता हूँ।
1: लीजिए बस आ ही गया नाश्ता, असल में अंगेठी ने धोखा दे दिया इसीलिए देर हो गई।
0: ओ अल्लाह मियाँ, 45 साल से चूल्हा फुकवा रहे हैं और आज भी अंगीठी ऐसे बुझा देते हैं कि शर्फू पगला जाता है। हो गई ना देर, साहब तो बेगम पर बिगड़ेंगे और बेगम मुझ पर। अरे काहे बुढ़ापे में जलील कराओ हो हमका।
1: शर्फू
0: आया।
3: शर्फू, ये अंडे का पोच बनाया है तूने या अपनी तस्वीर बनाई?
0: जी वो साहब, जल्दी में जर्दी टूट गई, गलती हो गई साहब।
3: लेकिन क्यों हो गई गलती? अगर इसी तरह सब लोग गलतियां करते रहे तो इस मुल्क का क्या होगा? तुम पोच बनाने में गलती करो, मैं फाइलों में ऑर्डर देने में गलती करूं, फिर
1: आपने भी कहा की बात कहाँ पहुँचा दी, जल्दी में जर्दी बिखर गई। शर्फू तुम चाय ले आओ, देखो कच्चा पानी मत डाल देना, ठीक से उबल जाए तभी डालना।
0: अरे नहीं बेगम साहब, 45 साल से चाय बना रहे हैं क्या, इतना भी नहीं जानते? अरे हम जब कर्नल थॉमस साहब क्या काम करते
1: बस,
0: थे।
1: बस तुम अपने अंग्रेज कर्नल साहब की बात रहने दो, वरना देर हो जाएगी, जाओ जल्दी चाय लेकर आओ।
0: अरे हमका तो सब पागल समझते हैं, जहाँ कर्नल साहब का नाम लियो सबको बुरा लगता है। अरे कर्नल साहब जैसा मालिक अब कहाँ मिलेगा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहो तो कैसा खुश हो जाते रहे। अरे अंग्रेज की बात ही और थी, और मेम साहब आहा क्या पटर पटर अंग्रेजी बोलती थी, और का मजाल जो कभी डांटे नौकरों को। अरे कि ई है दिन रात शर्फू के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे हमका का है, कुछ दिन और शर्फू को सता लें, फिर नहीं मिलेगा शर्फू जैसा कोई।
1: शर्फू, अरे आ गई चाय।
0: लाते हैं भाई, शर्फू कोई मशीन थोड़ी है। ला रहे साहब।
1: ला रहे हैं, ला रहे हैं, 10 मिनट तो हो गए, फिर साहब बहादुर का गुस्सा चमकेगा। उफ, इन दोनों

0: नौकर और साहब ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
1: क्या कह रही हो?
0: आपको कुछ थोड़ी ही कह रही हूँ, मैं तो शर्फू को कह रही थी।
1: अरे तुम शर्फू को क्या कहोगी, तुम में एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत ही नहीं है। एक नौकर पर तो काबू रख ही नहीं सकती, मेरी तरह 100-200 अमले पर काबू रखना पड़ता तो लुटिया डुबो देती।
0: बस रहने भी दीजिए, घर की खानादारी करनी पड़े तो पता चले कि ये काम कितना मुश्किल है।
1: अच्छा इस बहस को छोड़ो, मुझे 5 मिनट देर हो चुकी है और इसे मेकअप करना है। जल्दी करो, मेरे कपड़े कहाँ हैं, टाई कहाँ है, जूतों पर पॉलिश हुई या नहीं?
0: पापा आपके कपड़े जूते सब तैयार हैं।
1: अच्छा चलो, अरे ये जूतों पर पॉलिश हुई है या तेल मालिश, सब निकम्मे हैं, किसी को कोई काम करना नहीं आता। सलमा सलमा।
0: जी पापा।
1: ये जूतों पर पॉलिश किसने की है और टाई की इस्त्री किस कदर खराब है, वो मैं तो परेशान हो गया।
0: पापा गलती हो गई, आज पहन लीजिए ना, कल से ठीक कर दूंगी।
1: कल से। अच्छा देखो ड्राइवर तैयार है या नहीं, मैं अब चलूं। अच्छा बेगम मैं चला, 5:30 बजे आऊंगा और 6:30 बजे मुझे क्लब की मीटिंग में जाना है, फिर 8:30 बजे ओल्ड बॉयज का डिनर है, जरा मेरी स्याह अचकन और जयपुरी जूतियां ठीक करा देना, और सलमा बेटा तुम जरा देख लेना मेरी अचकन के साथ वाले मोजे भी ठीक कर देना।
0: बहुत अच्छा पापा।
1: अच्छा बेगम मैं चला, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज, बाय बाय पापा।
1: बाय बाय।
2: सलाम साहब। चल शर्फू, जान बच गई।
0: ओह खुदा का शुक्र है, आज का दिन कटा, अब 5 बजे तक नजात मिली। सुबह क्या होती है, कयामत होती है। शर्फू जरा अब मुझे चाय दे दे, सर फटा जा रहा है।
3: मम्मी पापा बूढ़े हो गए मगर अभी तक किस कदर स्मार्ट हैं और वक्त के कितने पाबंद हैं।
0: हाँ 2-4 महीनों की बात है, रिटायर हो जाने दो, सारी स्मार्टनेस चली जाएगी। मैं तो खुश होंगी जब ये रिटायर होंगे, पूरे घर का कोर्ट मार्शल किए रहते हैं। ऑफिस गए हैं, अब ऑफिस वालों का कोर्ट मार्शल हो रहा होगा।
1: क्यों बड़े बाबू, इस फाइल को पुटअप करने में इतनी देर क्यों हुई?
4: यस सर।
1: सर क्या मतलब, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने।
4: सर वो असिस्टेंट है ना पांडे, उसी ने देर कर दी।
1: आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया उसका?
4: यस सर। जी नहीं सर।
1: मैं आप दोनों को सस्पेंड कर दूंगा।
4: यस सर। जी सर। जी सर।
1: आप जा सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी साहब को भेज दीजिए।
4: यस सर।
1: कम इन।
5: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग। लेकिन आज आप 20 मिनट देर से क्यों आए?
5: वो सर जरा डॉक्टर के यहाँ चला गया था।
1: वहां पहले भी जा सकते थे, यू नो आई डोंट लाइक दिस, और आपका स्टाफ पर कंट्रोल भी ठीक नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विद यू।
5: सर वो बात ये है सर,
1: मैं फिजूल बातें पसंद नहीं करता, दैट्स ऑल। अब आप जा सकते हैं।
6: जी हुजूर।
1: ये फाइल डिप्टी साहब को दे दो।
6: वो आज छुट्टी पर हैं सर, दफ्तर नहीं आए।
1: क्यों नहीं आए हैं?
6: साहब उनकी मेम साहब बीमार हैं।
1: पता नहीं ये लोग नौकरी क्यों करते हैं, बीवी बीमार है तो दफ्तर नहीं आए, कभी बच्चा बीमार है कभी खुद बीमार है। तुम जा सकते हो। हाँ सुनो।
6: जी हुजूर।
1: देखो जो बाहर लोग मिलने के लिए बैठे हैं उनसे कह दो मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा, मैं जरूरी काम में मशगूल हूं, परसों 3:30 बजे मिलूंगा। पीए साहब से कह दो कि वो आज सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें, लोगों को सिवाय मिलने मिलाने की कोई काम ही नहीं है।
6: बहुत अच्छा हुजूर।
1: बेगम बेगम, अरे कहाँ हो?
0: अच्छा आप आ गए ऑफिस से?
1: हाँ भाई ऑफिस से अब हमेशा के लिए आ गया, आज रिटायर हो गया, चार्ज देकर आ रहा हूं। 35 साल के चक्कर से आज नजात मिली, अब जी भर कर आराम करूंगा। किस कदर हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आपकी उम्र भी तो आराम करने की है। खैर से अरशद की नौकरी हो चुकी है, घर में बहू आ चुकी, सलमा की शादी हो चुकी, अल्लाह ने सभी अरमान तो पूरे कर दिए। शर्फू शर्फू।
7: आया बेगम साहब। जी बेगम साहब।
0: देखो साहब आ गए और अब आज से रिटायर हो गए, कितने खुश हैं तुम्हारे साहब।
7: हाँ साहब मुबारक।

0: आराम, मगर हमको तो काम करते करते 45 साल हो गए साहब, हमको भी अब रिटायर कर दीजिए ना।
1: अरे शर्फू, तुमको कैसे रिटायर करूंगा? तुम तो हमारी बेगम की तरह हमारी जिंदगी भर के साथी हो, हैं?
0: नहीं साहब, अब हमारे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं, मगर हमको तो मौत ही रिटायर करेगी साहब। हम लोगन की किस्मत में एक ही बार रिटायर होना लिखा है। अच्छा, हम चाय बना लें।
1: बेचारा शर्फू वाकई 15 साल की उम्र से ये काम कर रहा है, मगर इसकी किस्मत में आराम नहीं है। अच्छा बेगम, मैं कपड़े तब्दील कर लूं। शर्फू, अरे ओ शर्फू,
0: जी साहब।
1: अरे जरा टेलीफोन तो ले आना, मैं जरा मेहता साहब से बात करूंगा।
0: लेकिन साहब, टेलीफोन तो कट गया, कल ऑफिस वाले ले गए।
1: अरे हाँ, ऑफिस का फोन था। अच्छा देखो, रामबिलास से कह दो कि मेहता साहब से किताब मांग के ले आए।
0: हुजूर, रामविलास तो अब नए साहब की ड्यूटी पर चला गया, कल ही तो कहने आया था कि अब वो नहीं आएगा।
1: अरे हाँ, याद आया, रिटायरमेंट के बाद वो चपरासी भी तो चला गया। मगर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चाय क्यों नहीं लाते? कितने बज रहे हैं? बेगम, बेगम,
2: जी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं?
1: क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारा लहजा इस कदर खुश क्यों है? 9:30 बज गए, अभी तक नाश्ता मेज पर नहीं लगा, और तुम कह रही हो कि चिल्ला क्यों रहे हैं?
2: ठीक ही तो कह रही हूँ, 9:30 बज गए तो कौन सी आफत आ गई? अब आपको कौन सा ऑफिस जाना है?
1: अब कौन सा मुझे ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना नहीं है तो क्या हुआ? क्या नाश्ता भी नहीं करना है? मैं रिटायर हो गया तो क्या?
2: आखिर मैं क्या करूं, अरशद को दफ्तर जाना है, पहले उसे नाश्ता दूं या आपको? उधर बहू बेगम की तबीयत खराब है, पहले पोते को देखूं या आपकी फिक्र करूं?
1: हाँ, अरशद को दफ्तर जाना है ना, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है।
0: अरे वाहरी दुनिया, यही साहब के लिए रोज हंगामा होवत रहे, और अब यही रिटायर का हो गए कि सबकी निगाह बदल गई। चल शर्फू, काम कर रही तो तुमका भी बस रिटायर कर दी है।
1: सलमा, सलमा,
2: ओफो, पापा रिटायर क्या हो गए, हर वक्त चिल्लाते ही रहते
1: सलमा,
2: हैं।
1: अरे ओ
2: जी
1: सलमा,
2: पापा।
1: कितनी देर से पुकार रहा हूं तुम्हें और तुम सुनती ही नहीं हो।
2: आ ही तो रही थी, आखिर इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, बेकार थोड़े ही बैठी थी।
1: बेकार थोड़े ही बैठी थी? बेकार तो मैं बैठा
2: पापा, आपने मुझे किस लिए बुलाया था?
1: हाँ बेटे, जरा मेरे कपड़े ठीक कर दो, मुझे पेंशन के कागजात लाने जाना है।
2: पापा, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी, मैं शर्फू को कह देती हूँ, वो ठीक कर देगा, प्लीज पापा।
1: कॉलेज में देर हो जाएगी? हाँ हाँ, ठीक तो है, मैं खुद ठीक कर लूंगा, कोई बात नहीं है।
3: मिर्जा साहब, ओ मिर्जा साहब।
1: अरे मिर्जा साहब, आइए आइए, कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तशरीफ लाइए।
3: भाई मैं पहले भी आ जाता, मगर नाश्ते में देर हो गई।
1: हाँ साहब, जरूर हो गई होगी, जब से हम लोग रिटायर हो गए हैं नाश्ते में देर हो ही जाया करती है। मेहता साहब, ये रिटायरमेंट की जिंदगी भी बहुत खराब है। नौकरी थी तो काम से परेशान रहता था और सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद खूब आराम करूंगा, और अब कोई काम नहीं है तो ज्यादा बेचैनी है।
3: मिर्जा साहब, किसी हाल में चैन नहीं। दरअसल रिटायरमेंट के बाद आदमी मशीन के उस घिसे हुए पुर्जे की तरह हो जाता है, जिसे मशीन से अलग कर दिया गया हो। अब इस जंग आलूद पुर्जे की मशीन की जरूरत नहीं मिर्जा साहब।
1: ठीक ही कहते हैं मेहता साहब, सब कुछ बदला बदला सा लगता है,

0: अपने लोग, दरो दीवार, सब कुछ बदल से गए हैं। बाहर के ड्राइंग रूम में अरशद के दोस्त बैठे रहते हैं। बेगम को पोते पोतियों से फुर्सत नहीं। बच्चे मेरे पास बैठते घबराते हैं। ऐसा लगता है रिटायर होकर मैंने सब कुछ खो दिया है।
1: मिर्जा साहब, अभी तो चंद दिन हुए आपको रिटायर हुए, मैं तो 2 साल से इसी तरह जी रहा हूं। मगर अब आपको एडजस्ट करना चाहिए, वरना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
0: हाँ मेहता साहब, हाँ ठीक ही कहते हैं। अरे जब जवानी ही नहीं रही तो बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। अच्छा ठहरिए, मैं जरा चाय के लिए कह दूं। बेगम बेगम जरा चाय भेज दो बाहर, मेहता साहब आए हैं।
2: दिन भर का यही चक्कर है, ना इन्हें कोई काम है और ना मेहता साहब को। बस 20 बार चाय बनाए जाओ। पहले ये दफ्तर में रहते थे, मुझे दिन में तो सुकून मिलता था।
0: तुम मुझसे कुछ कह रही हो?
2: मैं ये कह रही हूँ कि अरशद ऑफिस गए हैं, सलमा कॉलेज गई है और मैं बहू बेगम को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आप मेहता साहब से बेकार की गुफ्तगू छोड़िए और जरा बच्चों को देखिए, घर में और कोई नहीं है।
0: मैं बच्चों को देखूं और मेहता साहब की चाय?
2: तो क्या हुआ, बच्चों को देखना कोई गुनाह तो नहीं है? आखिर आप बेकार ही तो बैठे हैं, शर्फू से कह दीजिए चाय बना देगा। और हाँ, जरा उसे सब्जी लाने को भी कह दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, फिर डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे।
0: ठीक ही तो है, मुझे काम ही क्या है, बच्चों को देखूं, सब्जी मंगवाऊं। शर्फू शर्फू शर्फू
3: जी साहब, जी साहब, आज तबीयत ठीक नहीं है मालिक, बुखार है और बदन टूट रहा है।
0: ओ अच्छा, तो तुमने कोई दवा क्यों नहीं ली? तुम छोड़ दो, मैं खुद चाय बना लूंगा।
3: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मालिक, मैं चाय बना देता हूँ मालिक। मेरे जीते जी, आप कैसे चाय बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ।
0: शर्फू, तुम बहुत कमजोर हो गए हो
3: जी,
0: बूढ़े हो गए हो। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें भी रिटायर कर दूं, वाकई तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब तुम भी रिटायर हो जाओ शर्फू, आराम करो, तुम्हें पहले की तरह खाना रुपया सब मिलता रहेगा।
3: रिटायर? नहीं नहीं मालिक, मैं रिटायर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं रिटायर नहीं करूंगा, रिटायर नहीं करूंगा।

दोपहर के बाद इस उन्माद के तहत आप ये ड्रामा समाप्त कर रहे थे। तहरीर थी शफी मशहदी की और पेशकश थी शमीम फारूकी की। आई सामीन, अब वक्त हुआ चाहता है, लीजिए बज़्म मौसीकी के तहत ये गज़ल हम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आपने अभी समाप्त किया, और ये अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सामीन, गुलाम अली की आवाज़ में है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

गुलाम मलिक की आवाज़ में सामीन आपने इस गज़ल को समाप्त किया, और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आप तो फिराक गोरखपुरी का ये कलाम समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम करने की हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर हमारी मुलाकात होगी इस वादे और इरादे के साथ। खुदा हाफिज़।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बनबास का ये गीत सोनू निगम और मिथुन की आवाज़ों में। सईद कादरी की रचना है, संगीत दिया है मिथुन ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सरफिरा से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। मनोज मुंतशिर की रचना है, संगीतबद्ध किया है जीबी प्रकाश ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नोटबुक, इस फिल्म का गीत सुनिए विशाल मिश्रा और अक्षय कौर की आवाजों में। अक्षय त्रिपाठी की रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल मिश्रा ने।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
3: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: जी प्रा इस फिल्म का गीत सुनिए संतोष वेनिकी और आयरा उडुपी की आवाजों में

अब आइए श्रेया घोषाल को सुनते हैं फिल्म लापता लेडी में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम संपत ने।

नमस्ते इंग्लैंड कार्यक्रम के आखिर में इस फिल्म का गीत सुनिए, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोलों को संगीतबद्ध किया है मन्नान साह ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए रूपम किशोर के स्वर में गजल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं रूपम किशोर के स्वर में गजल।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

रुपम किशोर के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म संघर्ष का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सनम वे वफा, इस फिल्म का गीत सुनिए विपिन सचदेवा की आवाज में। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है महेश किशोर ने।

सड़क इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हिना। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथी की आवाज़ों में।

प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई।

नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े

एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को

लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेट बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी

पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है।

किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देश

0: उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे, वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही है। सरकार का सामर्थ्य आप ही है, जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है, और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है, और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले

0: के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मगही लोकगीत। कलाकार हैं प्यारे लाल सर्वहारा और महेश प्रसाद लिम्का। पहले सुनिए प्यारे लाल सर्वहारा से लोक भजन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मघेल लोकगीत। कलाकार थे प्यारे लाल सरवाहा और महेश प्रसाद लिम्का।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार से ही हमें प्यार, संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की सीख मिलती है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी हमारे जीवन को सुंदर और सुखद बनाते हैं। परिवार के साथ रहने से सुरक्षा, अपनापन और विश्वास भी मिलता है। बहनों, परिवार हमारे सुख दुख का साथी होता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तब परिवार के लोग हमारा सहारा बनते हैं। वे हमें हिम्मत देते हैं और कठिनाई में साथ खड़े रहते हैं। उसी तरह से रिश्तेदार जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, फूआ फूफा, मौसा मौसी या अन्य रिश्तेदार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है बहनों, एकल परिवार के कारण या कहे या व्यस्तता के कारण परिवार रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम हो गया है। अब तो उनसे शायद कई सालों में मिल भी नहीं पाते। बात कम होने से रिश्ते औपचारिक हो जाता है। परसों बाद कभी मिले भी तो संवाद ढंग से नहीं हो पाता, वो अपनापन भी नहीं दिखता है। आज ज्यादातर माता पिता खुद ही अपने काम और व्यस्त जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने का वक्त भी नहीं निकाल पाते। अगर रिश्तेदार अपने शहर या घर बुलाते हैं और बच्चे जाने के लिए मान भी जाते हैं तो बड़े व्यस्तता का हवाला लेकर जाने से मना भी कर देते हैं। कई बार तो बड़ों के बीच का मनमुटाव भी दूरी का कारण बन जाती है। और कई बार माता पिता अपने बच्चों को यह भी नहीं बताते कि उनके किन शहरों में कौन कौन से रिश्तेदार रहते हैं या उनसे क्या रिश्ता है। ऐसे में बच्चे बड़े होकर भी अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, जिससे रक्त संबंध है या पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ होने से जो सुरक्षा और अपनापन मिलता है वो कहीं और संभव भी नहीं है। बहनों, परिवार ही हमें मजबूती और सहारा देता है और खुद को अपने से जोड़ने के साथ साथ बच्चों को भी रिश्तेदारों से रिश्ता निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहनों, साल में कम से कम एक बार पूरा परिवार मिलने की योजना बना सकते हैं या छुट्टियों में एक साथ घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। बहनों, आज अकेला होने के कारण कई मानसिक, सामाजिक और व्यक्तित्व संबंधी दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं। और तब तो और भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने ममेरे चचेरे रिश्तों से जुड़ाव और आत्मीयता महसूस करें। बहनों, आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में परिवार रिश्तेदार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। उनके साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं और मन

भी खुशी मिलती है। उसी तरह से बहनों, परिवार में दामाद और जो बहू होते हैं दोनों का भी रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। बहू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, वो नए घर में आकर प्रेम, अपनापन और खुशियाँ लेकर आती है। बहू जब हमारे घर में आती है तो वो केवल एक सदस्य नहीं होती बल्कि परिवार का हिस्सा भी बन जाती है। वो अपने नए घर को अपनाती है, सबका ध्यान रखती है और प्रेम से रिश्ते को जोड़ती है। इसलिए बहू को बेटी जैसा प्यार और सम्मान देना चाहिए। वैसे ही बहनों, दामाद भी बेटी का सिर्फ पति नहीं होता बल्कि घर का एक सदस्य भी होता है। उसका आदर संस्कार करना हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा भी है। अक्सर देखा जाता है कई बार बहू और दामाद के रिश्तों में भेदभाव किया जाता है जो कि सही नहीं है। जैसे कि दामाद का आदर किया जाता है वैसे ही बहू का भी हमें सम्मान करना चाहिए। बहनों, दोनों रिश्तों को बराबर मान देने से परिवार में संतुलन और प्रेम बना रहता है। बहू घर की जिम्मेदारी को निभाती है, परिवार को जोड़ कर रखती है और घर में खुशियाँ लाती है। वहीं दामाद भी बेटी की खुशियों का साथी बनता है और परिवार से जुड़ाव बनाए रखता है। अगर बहू को बेटी जैसा प्यार मिले और दामाद को बेटी जैसा मान मिले तो घर में कभी मनमुटाव नहीं होगा। मैनो हमें समझना चाहिए, रिश्ता छोटा हो या बड़ा नहीं, हर रिश्ता बराबर होता है। दोनों का समान आदर, प्रेम, अधिकार मिलना चाहिए। यही अच्छे संस्कार और खुशहाल परिवार की पहचान होती है। बहनों, 25 मई यानी सोमवार को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है बहनों कि इस दिन गंगा, माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसलिए इस पर्व को गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहनों, राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर लाए थे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगवान शिव ने गंगा के तेज प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण किया, तब गंगा माँ धरती पर उतरी। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व भी है बहनों, ये हमें अब हमारी परंपराओं और आस्था को जोड़ता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी माँ मानी जाती है। उनका जल पवित्र और पूजनीय माना जाता है। बहनों, गंगा दशहरा हमें जल संरक्षण और नदियों की स्वच्छता का भी संदेश देता है। यह पर्व सिखाता है कि हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। गंगा दशहरा आस्था, पवित्रता, प्रकृति, प्रेम और संस्कृति का प्रतीक है। यह पर्व हमें धर्म के साथ पर्यावरण की भी रक्षा का संदेश भी देता है। तो चलिए गंगा माँ को याद करते हैं और एक गीत सुनते हैं।

0: तो बहनों, जैसे गंगा मैया को स्वच्छता रखना जरूरी है, उसी तरह से स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जिस तरह से हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह से हम तौलिया और चादर के भी सफाई बहुत जरूरी हो जाता है। ये रोज़ हमारे उपयोग में आते हैं, इसलिए धूल पसीना कीटाणु भी जमा हो जाता है। तो बहनों, तौलिया को रोज़ इस्तेमाल होता है, इसमें पसीना गंदगी लग जाती है, और अगर गीला तौलिया को लंबे समय तक बिना धोए रखा जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया और दुर्गंध पैदा हो सकती है। इससे त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए तौलिया को नियमित रूप से धोना और धूप में सुखाना चाहिए। अगर तौलिया ज़्यादा चिपचिपी हो गई हो तो उसे आप गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डालकर आधा घंटे के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद अच्छे से धोकर उसे धूप में सुखाएं। इसी तरह से बहनों, जब चादर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हम रोज उसी पर सोते हैं, इसलिए उस पर धूल पसीना गंदगी भी जमा हो जाती है, और गंदी चादर में अगर सोते हैं तो उससे एलर्जी, खुजली और बीमारियां भी हो सकती हैं। साफ चादर पर सोने से आराम भी लगता है और नींद भी अच्छी आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो बहनों, हमें समय समय पर तौलिया और चादर धोनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार बेड की चादर बदल कर साफ सुथरा चादर बिछाएं। साफ सफाई अपनाने से बैठो घर स्वच्छ भी रहता है और हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं। और बहनों, हम बढ़ते हैं अपने विशेष कार्यक्रम थीम पर आधारित फिल्म संगीत की ओर। बहनों, मन शांत और प्रसन्न हो तो जीवन सुंदर लगता है, मन खुश हो तो हर काम अच्छे से होता है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए मन को हमेशा अच्छा और सकारात्मक रखना चाहिए। मन ही मंदिर, मन ही पूजा, मन से जग पहचान, मन अच्छा तो जीवन सुंदर, मन से मिलता मान। सही है बहनों, जब मन खुश होता है ना तो मन तन दोनों डोलने लगते हैं, कुछ इस तरह से।
1: हेमंदा, इसमें विश्वास करती थी कि सिंपल ट्यून हो, बोल अच्छे हो, और बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा या इसमें वो विश्वास नहीं करते, और खुद गाते थे। अच्छा, तो जो खुद गाता है वो जब गाना बनाता है तो उसका एक अलग ही रंग हो जाता है। हेमंदा मुझे समझा देते थे कि लता, मैं ये चाहता हूँ इस गाने में।

मैनो मन बहुत चंचल होता है, कभी इधर तो कभी उधर भटकता है। इसलिए मन को अच्छे विचारों, अच्छी बातों और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। पढ़ाई, योग, ध्यान, संगीत और अच्छे लोगों के साथ रहने से मन भी खुश रहता है। मन में प्रेम हो तो रिश्ते खुल जाते हैं, अच्छे विचारों से जीवन संवर जाते हैं। और हाँ बहनों, कभी-कभी तो रात को कुछ बातों से मन थोड़ा बहका बहका सा भी हो जाता है।

बहनों, मन से मन का रिश्ता सबसे सुंदर रिश्ता होता है जब शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोलते हैं। जब मन किसी से सच्चा प्रेम करता है तो दूरियां भी करीब लगने लगती हैं। मेरा मन तुम्हारे नाम का गीत गुनगुनाता है, हर ख्वाब में बस तुम्हें ही सजाता है। मन चाहता है कि बस तेरे साथ मिले, तेरे संग हर खुशी का एहसास मिले।

बहनों, जब मन किसी को अपना मान ले तो हर धड़कन में प्यार बस जाता है। मेरे मन की हर धड़कन तुमसे बातें करती है, जैसे चांद रात से मोहब्बत करती है। मन का प्रेम शब्दों से नहीं, एहसासों से समझा जाता है। जब कोई मन में बस जाता है तो उसकी याद भी मुस्कान बन जाती है। मन चाहता है तेरे साथ ऐसे जुड़ जाऊं, मन चाहता है तेरे साथ ऐसे जुड़ जाऊं जैसे खुशबू फूलों में घुल जाती है। और जब बारिश होती है तो इस भीगे मन की बात ही कुछ और होती है।

0: गुंजन कुमार को अनुमति, नमस्कार।
1: ये था बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में

कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। किसले कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, देश की स्वतंत्रता को अचल रखने में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं आभा रानी।
1: बहुत गौरव की बात है कि 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह दिन राष्ट्र का गौरव दिवस है। युवा अपार क्षमताओं से भरे होते हैं। युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र का विकास भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियां होती हैं। देश के युवाओं ने हर क्षेत्र में हर स्तर पर अपनी दक्षता सिद्ध की है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत के युवाओं में अहम परिवर्तन आया है। कैरियर हो या जीवन साथी का चयन, भाषा हो या पहनावा, जीवन शैली हो या अपनी बातों को रखने का अंदाज, एक बेहद आकर्षक अंदाज आत्मविश्वास के साथ भारतीय युवा चमके हैं। आश्चर्यजनक ढंग से अपने व्यक्तित्व में निखार लाए हैं। अपने जुनून तथा जोश को दमदार अभिव्यक्ति दी है। उन्हें यदि सही दिशा में सही अवसर मिले तो कोई वजह नहीं बनता कि उनमें शिथिलता के लक्षण आ जाएं। यह भारतीय युवाओं के कुशल मस्तिष्क की ही क्षमता है कि वैश्विक स्तर पर उन पर विश्वास किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन पर सौंपी जा रही हैं। भारत की विशाल युवा शक्ति न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया में चमत्कार कर सकती है। जब मैं युवा शक्ति की बात करती हूँ तो मेरे सामने स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का नवयुवक और नवयुवती होती है, जिनका इन शब्दों से उन्होंने आह्वान किया था। वह नवयुवक नवयुवती जो 15 से 35 वर्ष की आयु का हो, जो भारत माता के लिए बलिदान को तैयार हो, जो हृष्टपुष्ट और मजबूत हो, जो विद्वान हो और जिसमें ऊर्जा तथा स्फूर्ति हो, इस श्रेणी के व्यक्ति ही इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हो सकते हैं, इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण रख सकते हैं। जब माँ की पहचान उनकी संतान से होती है तो स्वाभाविक है वह माँ की रक्षक और उनकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होती है। कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना उसके नागरिकों का चरित्र। नागरिकों के चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं, और जब उन्नति नहीं होगी तो सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। स्वामी विवेकानंद का मिशन नवयुवकों को जगाकर भारत माता की खोई प्रतिष्ठा वापस लाना था। उसके लिए उनको नई पीढ़ी पर पूरा भरोसा था। इस संबंध में उनकी सोच कुछ इस प्रकार थी। माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन। इट इज फॉर द यूथ टू बिल्ड नेशन। माई होप ऑफ द फ्यूचर लाइज इन द यूथ्स कैरेक्टर। युवा शक्ति देश तथा समाज की रीढ़ होती है। युवावस्था में असीम ऊर्जा, उच्च महत्वाकांक्षाएं, जागरूकता तथा चुनौती लेने की क्षमता होती है। युवा देश तथा समाज को प्रगति के शिखर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूत तथा भविष्य के बीच का सेतु भी है। युवा देश तथा समाज के जीवन मूल्यों का प्रतीक भी है। उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी सपने होते हैं। समाज को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। मेरा भारत महान इस पंक्ति को सार्थक करने के लिए युवा पूरी तरह से प्रयासरत हैं। समाज में तेजी से आ रहे बदलाव के प्रति बड़ी संख्या में युवाओं का नजरिया शॉर्टकट की बजाय कर्म तथा श्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की ओर होता जा रहा है। यदि हर पीढ़ी जागृत और जागरूक हो तो देश का विकास आसानी से होगा।

में युवाओं के जागृत रहने से सर्वाधिक प्रभाव होगा। वेद में भी वर्णित है, युवा शक्ति पराशक्ति, यह वाक्य युवाओं की महत्ता को उस काल में भी दर्शाती थी। जो बुजुर्ग हैं, उनका समय बीत चुका है, वे अपना धंधा कर परिवार चलाने, उनके भरण पोषण में लगे हैं। लेकिन जो युवा हैं, वे जागृत हैं, जागरूक हैं, उनकी सोच अलग तरह की है। युवा उन्नति का रास्ता देखता है, उसकी प्रवृत्ति अलग तरह की होती है, वह बायस होकर नहीं सोचता है, इसलिए वह समाज को एक नई दिशा दे सकता है। युवा परिवार तथा समाज का सबसे सक्रिय सदस्य होता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह नौकरी करता हो, किसान मजदूर खिलाड़ी हो, शिक्षित अशिक्षित व्यवसायी हो या कोई अन्य कार्य करे। हर युवा यदि अपने आप को अच्छा बना ले, अपने को सही रास्ते पर ले जाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वे अच्छी तरह पढ़ाई करें, जो नौकरी कर रहे हैं वे ईमानदारी से अपना काम करें, जो व्यवसाय या कोई अन्य ही काम कर रहे हैं वे सभी अपने अपनी दिशा में अच्छी तरह तथा ईमानदारी से अपने अपने कामों को करें, वे यह सोच लें कि जो भी हम काम कर रहे हैं वह देश के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से जितने भी नागरिक हैं, जो भी कार्य करते हैं, वास्तव में वह देश के लिए ही होता है। इससे परिवार तो चलता ही है, परिवार की अच्छाई होती है। कोई भी बच्चा पढ़कर यदि अच्छा करता है, कोई अफसर बनता है, कोई भी कुछ अच्छा करता है, तो परिवार का भला होता है, उसका भला होता ही है, साथ ही साथ देश का भी भला होता है। जितने भी नागरिक हैं युवा, वे यदि यह सोच लें कि हमको ईमानदारी पूर्वक मेहनत से देश के लिए काम करना है, देश प्रेम की भावना उनमें हो, आपस में एक दूसरे से देश प्रेम से संबंधित बातें हों, देश प्रेम संबंधित बातों का संचार करें, संवाद करें, दूसरों को भी देश से प्रेम करना सिखाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाएं, प्रचार प्रसार करें, इस तरह का जब विचार और भावना होगी, इसका संचार होगा, राष्ट्र प्रेम रहेगा सभी युवाओं में, देश के प्रति सभी को प्रेम रहेगा, तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। जब युवाओं को, उनके समाज को यह लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वह देश के लिए कर रहे हैं, वैसी स्थिति में वह ईमानदारी पूर्वक मनोयोग से कार्य करेंगे और देश की प्रगति, देश का विकास स्वतः हो जाएगा। देश प्रेम की भावना रहेगी और वे बुद्धिजीवी होंगे, वे पढ़े लिखे होंगे, उनके पास अनुभव है, वर्तमान स्थिति जो है उसमें वे अद्यतन रहते हैं, उन्हें ज्ञान भी सबसे अधिक रहता है, तो वे यदि अच्छे हो जाएंगे तो देश अच्छा हो जाएगा। देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध रहेगा तो कहीं से भी स्वतंत्रता खोने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं तथा जनसंख्या के सबसे गतिशील खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे देश के विकास में युवाओं तथा उनके कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश का मूल्य वहां रहने वाले लोगों द्वारा जाना तथा स्थापित किया जाता है। यह देश के नागरिकों की बुद्धि तथा कार्य है जो राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक देश की प्रगति से जुड़ा है। राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीय विकास आमतौर पर लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्र में सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता के निर्माण में सभी नागरिकों को जोड़ने, संलग्न करने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। युवा किसी राष्ट्र को के भवन ब्लॉक हैं। अधिक सशक्त युवा ही अधिक विकसित राज्य का निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका होती है, इसलिए जो देश अपने युवाओं का सही दिशा में उपयोग करते हैं वे अधिक विकसित होते हैं। युवाओं के मन की ऊर्जा तथा चमक एक राष्ट्र के लिए मशाल वाहक का कार्य करती है। इसके विपरीत जो देश युवाओं को पीछे कर देते हैं वे विफल रहते हैं। विकसित देश अपनी कीमत से पूरी तरह वाकिफ हैं। वे युवाओं को एक परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। अपने देश भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी युवाओं का बहुत महत्व दे रहे हैं तथा इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर इन्हें सक्षम नागरिक बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। युवाओं की शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, खेल, उनके मनोरंजन पर वे विशेष ध्यान दे रहे हैं। देश की एकता, अखंडता, इस सब के बारे में भी सभी युवा अवेयर रहें। युवा अवेयर रहेंगे तो सारा कुछ होगा। सभी जगह आप देखते होंगे, ऑफिस वगैरह में भी, कि युवा सबसे अधिक काम करते हैं। सेना में युवा हैं। जहां भी मेहनत से काम करने तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, वहां उस दायित्व का निर्वहन युवा ही कर रहे हैं। सारा कुछ युवा के ऊपर निर्भर करता है। युवा देश को मजबूत बनाता है, विकसित करता है, और जो देश मजबूत होगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। इसका प्रमाण है, छोटे छोटे देश हैं, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, इनकी जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से लगभग आधी है।
दुनिया के बहुत मजबूत देश हैं ये। इसका कारण है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रजातंत्र

आंतरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से वे आगे हैं, दुनिया में बहुत आगे हैं और बहुत मजबूत हैं। उस तरह के देश की स्वतंत्रता को छीनने का प्रश्न ही नहीं उठता, वे अवेयर हैं। अब दोनों जर्मनी मिलकर एक हो गया है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। नहीं तो पहले बहुत छोटा छोटा था, परंतु बिल्कुल अखंड था, बिल्कुल स्वतंत्र था। उन सब की स्वतंत्रता पर कोई आँच आने वाली नहीं है। युवा बिल्कुल निष्पक्ष होकर, इम्पार्शियल होकर देश में जाति की राजनीति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति, क्षेत्रीयता की राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, जिसे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। वे जाति आधारित, धर्म और संप्रदाय आधारित, क्षेत्रीयता आधारित बातों को अपनी नैतिकता में नहीं आने दें। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग तथा क्षेत्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दें। इस तरह की गंदी राजनीति से वे दूर रहें तथा ऐसी राजनीति नहीं होने दें। युवाओं की सही विचारधारा हो, सही दिशा में काम करें। यदि ऐसा होगा, वे इस तरह से रहेंगे, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रीयता के आधार पर कहीं भी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम बना रहेगा, तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। यदि ऐसा रहेगा, तो आज क्या, हजारों वर्ष बाद भी देश की स्वतंत्रता कायम रहेगी, अचल रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। युवा संविधान का अध्ययन करें, उन्हें भारतीय संविधान की समझ हो, वे संविधान का सही तथा सार्थक उपयोग करें, संविधान के मूल्यों का पालन करें, अपने आचरण में उतारें तथा दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। भारतीय संविधान समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने की बात करता है। यह न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता एवं उन सभी के बीच प्रचार प्रसार करने की बात करता है। हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा की भावना की बात करता है। संविधान के इन मूल्यों की देश में स्थापना सच्चे अर्थ में देश के जागरूक युवा ही कर सकते हैं। युवा समाज का भी अनुभव करें। आजकल क्या है, हम लोग स्कूल कॉलेज में नामांकन कराते हैं, बच्चा सीधे केवल पढ़ाई में लगा रहता है, इधर उधर का कोई अनुभव या ज्ञान उसे नहीं रहता और उसके दिमाग में यही रहता है कि पढ़ लिखकर मुझे नौकरी करनी है। सामाजिक एवं व्यावहारिक ज्ञान भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। देश का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इतिहास बताता है कि कोई देश स्वतंत्रता कब खोता है, कोई देश स्वतंत्र कब होता है और कोई देश लगातार स्वतंत्र कैसे रहता है। इतिहास के अध्ययन से इन सब बातों की जानकारी होती है। शिक्षा केवल साक्षरता अथवा सूचनात्मक समृद्धि नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा का प्रथम तथा अंतिम लक्ष्य और समाज के लिए समर्पित सुयोग्य नागरिक की रचना है। आज प्रायः जनमानस में शिक्षा का अर्थ साक्षरता और सूचनात्मक जानकारियों से समृद्ध होना है, जिससे सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के वेतनभोगी अधिकारी कर्मचारी तैयार हो रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की इस अपूर्ण और असफल अवधारणा को लक्ष्य कर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसके नाश की कामना करते हुए भारत भारती में लिखा था, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्ख ते जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी। भारत की शिक्षा व्यवस्था अतीत में बहुत समृद्ध थी। भारतवर्ष में शिक्षा का यह भ्रामक स्वरूप ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आया। अंग्रेजों का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो राजकाज में उनकी सहायता करके ब्रिटिश राज्य की रीतियों नीतियों को संचालित करने तथा उनके शासन को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। युवा आपसी भेदभाव नहीं करें। आपसी भेदभाव के कारण ही हिंदुस्तान गुलाम हुआ और इतने दिनों तक गुलाम रहा। आपसी भेदभाव ही उसका कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। देश मजबूत और समृद्ध था। अंग्रेज भी आए तो क्या किए, फूट डालो राज करो, यही नीति अपनाकर आसानी से राज किए। उस समय यदि पूरे हिंदुस्तान की जनता एकमत होती तो किसी का भी साम्राज्य भारत पर नहीं हो सकता था। आपस में मिलजुल कर नहीं रहने के कारण बहादुर लोग मारे गए और देश परतंत्र हुआ। आज भी हम देखते हैं कि युवाओं में इस बात की कमी है, वे इस कमी को पूरा करें, इतिहास से शिक्षा ग्रहण करें। युवा देश के सर्वाधिक सजग नागरिक हैं। युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है, उनमें विवेक तथा असीम क्षमता है। वे नहीं करेंगे तो इस कार्य को कौन करेगा। वे समझें कि हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो देश के लिए, बुरा कर रहे हैं तो वह भी देश के लिए कर रहे हैं, ये उनकी समझ होनी चाहिए।
छोटी मोटी बातों को लेकर अपने समाज में, अपने गांव में, जिले में धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, सांप्रदायिकता

0: क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव, झंझट, मन मुटाव नहीं करें। सबकी भावना नकारात्मक नहीं है, पर कुछ की है वह देश को हानि पहुंचा रही है। कभी भी आज़ादी खतरे में पड़ेगी तो ऐसे लोगों के कारण ही पड़ेगी। इसलिए युवा ये प्रण लें कि वे देश की राजनीति करेंगे, क्षेत्र की राजनीति नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ वे देश के विकास में भी अपना मजबूत योगदान सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से यदि वे रहेंगे तो देश की स्वतंत्रता खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वह अचल अटल रहेगी। मैं चंद पंक्तियों के द्वारा अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। भारत माता पुकारती, जाग नौजवान नवयुवती, जाग जाग और जग जगा जागरण के गीत गा। देश के जवान जाग, शौर्य स्वाभिमान जाग, राष्ट्र संस्कृति समाज भाग्य के विधान जाग। जागी तरुणाई ही राष्ट्र को संवारती है, जाग नौजवान नवयुवती जाग। आप सभी युवाओं को संकल्प लेना चाहिए, मेरा देश मेरा घर, इसकी सुरक्षा मेरा काम।
1: पिछले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, देश की स्वतंत्रता को अचल रखने में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थी आभा रानी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जिंदा दिल। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

AIR at 90. लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ीकू, फिल्म का नाम है अंदाज़। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा

लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म दोस्ती में सुनिए लता मंगेशकर को। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मैंने प्यार किया इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार राम लक्ष्मण।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे अधिक मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और मठ मंदिरों से छात्रों और अभिभावकों के लिए पेयजल और सत्तू जैसे पेय पदार्थों की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिलते हैं। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष

0: जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने का एक अहम ज़रिया हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 19वें रोज़गार मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जाहिर किया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी लगन, तर्ज अमल और रोज़मर्रा के कामों से इस भरोसे का मान रखें और इसे मज़ीद मजबूत करें। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्याती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया के कई मुख्तलिफ ममालिक के साथ शराकतदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके, रोज़गार और आलमी तजुर्बा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क अब पूरी दुनिया का एक काबिले एतमाद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोज़गार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, तंजीमों में नौमुंतखब 51,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को तकरीरी नामा तकसीम किए गए। ये रोज़गार मेला पूरे मुल्क में 47 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया गया था। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तहान के उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका मकसद दूर दराज के इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को बगैर किसी माली और जहनी तनाव के वक्त पर इम्तहान मराकज तक पहुँचाना है। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, रज़ाकाराना तंजीमों और मठ मंदिरों से भी अपील की है कि वो तलबा और उनके वालदैन के लिए पीने के पानी और सत्तू जैसे मशरूबात के इंतजाम में तआवुन करें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में मुनाकिद दो रोज़ा AI समिट का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने कहा कि हमारा अज़्म है कि यूथ एनर्जी स्टार्टअप और इख्तरा के ज़ोर पर बिहार डिजिटल इनकलाब के सफ़े अव्वल की रियासत बने। उन्होंने कहा कि AI पर मोहित तरक्की से तालीम, सेहत, ज़रात और नज़्म व नस्क को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जनाब चौधरी ने कहा है कि इस समिट का ख़ास मकसद रियासत को टेक्नोलॉजी हब बनाने और नौजवानों के लिए फ़रोग़ हुनर के नए मौक़े फ़राहम करना है। प्रोग्राम में मुल्क के AI माहिरीन, स्टार्टअप डेवलपर्स और रिसर्च स्कॉलर समेत हज़ारों की तादाद में तलबा शामिल हो रहे हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा है कि तवानाई से भरपूर कारकुन ही पार्टी की असल ताकत हैं। जनाब नवीन ने बिहार BJP की जानिब से पटना सिटी में मुनक़दा दो रोज़ा दीनदयाल उपाध्याय तरसीलो तरबियती मुहिम का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन पूरी लगन और तुंदही से काम कर रहे हैं और ऐसे तरबियती प्रोग्रामों से उन्हें बेहतर रहनुमाई मिलती है। इस मौके पर पटना साहब के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, रियासती सदर संजय सरोगी समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी कल इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत में आइंदा 5 वर्षों में 1,00,000 असातज़ा की तकर्री होगी। इसके तहत हर साल कम से कम 20,000 असातज़ा की तकर्री की जाएगी। इसके लिए हर साल जुलाई के महीने में तकर्री से मुतालिक इश्तहार जारी किया जाएगा। महकमे तालीम की जायज़ा मीटिंग के दौरान जनाब चौधरी ने असातज़ा के तबादला के लिए नई पॉलिसी बनाने की भी हिदायत

0: हिदायत दी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रियासत के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं शुमाल मशरकी हिस्सों में मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी और बारिश के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल अजला के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। दूसरी तरफ पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास समेत रियासत के जनूबी वस्त और जनूबी मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी CSBU ग्रेड टू के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी डब्ल्यू

www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य, सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है।

0: है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है, जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए

0: निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष

0: में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म दोस्ती में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी को फिल्म का नाम है चा चा चा। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार इकबाल कुरैसी।

लीजिए सुनिए, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है बेटी बेटी। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म समाधि में सुनिए आशा भोसले को। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

यस बॉस, इस फिल्म में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार

सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान की बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत

राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू, यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी,
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको यह चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी, महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

Continue.

0: दिखा दो।
1: इतने उतावले क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
0: ये लो।
1: कितनी अच्छी है ये माला।
0: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
1: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
0: अच्छा,
1: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
1: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
0: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
0: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
1: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
1: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
1: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
1: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
1: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
1: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
1: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे रे,
1: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
1: तारा सुन
3: जी,
1: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
1: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये। पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
0: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
0: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
0: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: स्वामी,

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो

0: मेरे देवता,
1: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुझे कितनी सुंदर हो,
2: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी,
2: बलपूर्वक विवाह करने के लिए
1: पागल चकोर
2: अपनी विशाल सेना
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
0: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
0: इस पागल पर
2: सहायता की
0: प्रार्थना
2: की
1: है। महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
0: हूँ।
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय,
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
0: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम,
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी, यह केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी,
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी,
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
1: हूँ। ठहरो रानी,
0: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
1: रानी ठहरो।
0: नहीं
1: रानी, सुनो तो।
0: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
1: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ, सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
0: ना,
1: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा न कहिए प्रियत।

0: यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो यह दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित होती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
3: धानी जी,

रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ पगली। रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, जस्ता भी ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है। मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना। कहना कहना रानी ने विजय मार

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामन तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो? हमारी रानी का भंग शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा।

0: रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक ना लगे।
1: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना।

0: प्रश्न अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
1: विजय हमारी है, हमारी हमारे साथ है।
2: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
0: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
2: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
3: सामंत,
0: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
3: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: नेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात, आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
1: 200 नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
1: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
2: जी जी।
1: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
2: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था, लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
1: Correct.
2: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए, तो उन्होंने
1: अच्छा।
2: मुझे ऑडिशन लिया। पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था, तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं
2: होती
1: होती
2: है।
1: तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ।
2: जी जी।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
2: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
1: क्या बात।
2: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।
1: हाँ।
2: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
1: अरे
2: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशराज पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती में आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा अच्छा
2: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें।
1: हाँ।
2: तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह।
2: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था तो
1: ओके।
2: अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजाते कोई नहीं था।
1: हाँ।
2: तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
1: अरे
2: गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी
1: चबूतरे में हुआ,
2: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
2: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके।
2: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
2: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं मैंने 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओ रे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
2: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो

0: बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय
1: अरे
0: तक,
1: वाह,
0: जीजाउरी की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस पे
1: लोकगीत?
0: ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
1: हाँ
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आया, बहुत बहुत
1: तो।
0: मजा आया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा,
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और मैं
1: बाबा
0: नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारे छोटे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह,
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2 2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि ये इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है
1: है,
0: मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: जाए। गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना सुनता,
1: फिल्म।
0: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए,
1: है,
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे।
1: बिल्कुल वो

0: एक जहन में बसे
1: बहुत
0: होते
1: ही
0: हैं और ये उस दौर की याद लेके
1: जी
0: आते
1: जी
0: हैं।
1: जी हमने
0: बातचीत
1: बहुत
0: करें।
1: देखा है फिल्म को,
0: वाह।
1: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
0: हाँ,
1: गुंडा,
0: क्या
1: जो
0: बात
1: भी
0: है।
1: सीडी पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
0: वाह, ये
1: हाँ
0: गाना सुनते
1: जी।
0: हैं।

0: देवेंद्र आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका
1: मुलाकात
0: परिचय
1: हुई है।
0: होता है
1: जी
0: जो तब तक NSD में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए
1: दिखाई दे।
0: और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस
1: तो
0: चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिताजी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो।
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में।

0: करता हूँ, तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा सर नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फ़ोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा
0: छोटे
1: वाला।
0: वाला फ़ोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
1: हाँ
0: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
1: रिकॉर्ड कर
0: इसमें
1: दो।
0: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
1: अरे
0: तो
1: गजब,
0: तुम
1: वो
0: अनुशासित
1: उसने
0: हो,
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब
1: दिया।
0: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो।
1: हाँ
0: तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो
0: तो मैंने
1: कॉलेज
0: कॉलेज
1: किस
0: में,
1: शहर में था?
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सत्यनाग नाटक किया,
1: बिल्कुल।
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें, उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको? कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे बहुत बड़े
1: हाँ
0: कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान
0: तो
1: ग्रुप।
0: अभियान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलखनंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब।
0: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर
1: हाँ
0: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा?
1: बिल्कुल।
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पर खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
1: अच्छा।
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ
0: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख लें। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं,
1: अरे
0: बड़े बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये,

0: उन्होंने बोला कि इसको लेके आ गए कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर।
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: बहुत
1: रे।
0: कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं हैं, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं हैं, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्ट्री कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूँ आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिच रही खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है।
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह
0: कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा
1: वाह
0: अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29:44 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी पटना के युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ईशा।
1: और मैं हूं आशुतोष।

0: दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं बातें आपकी, सोच आपकी और मुद्दे भी आपके, क्योंकि युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की आवाज है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 621 किलोहर्ट्ज़ 483.1 मीटर पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौसम सिर्फ वातावरण नहीं बदलता बल्कि हमारी आदतें, हमारा मूड और हमारा पूरा लाइफस्टाइल भी बदल देता है?
0: बिल्कुल ईसा, गर्मी बढ़ते ही हमारी दिनचर्या बदल जाती है, खान पान बदल जाता है और कई बार तो हमारी ऊर्जा और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम मौसम के साथ खुद को कितना ढाल पा रहे हैं, यही है आज की हमारी खास चर्चा।
1: जी हाँ आशुतोष, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बदलता मौसम, बदलता लाइफस्टाइल के। जानेंगे कि बदलते मौसम का हमारे स्वस्थ दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है और कैसे छोटी छोटी सावधानियाँ हमें स्वस्थ और फिट रख सकती हैं।
0: इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी आज की प्रेरक पंक्ति, फिर बात करेंगे एक बेहद खास दिन की, क्योंकि आज है विश्व कछुआ दिवस। जानेंगे इन शांत और अनोखे जीवों से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य और पर्यावरण में उनकी अहम भूमिका के बारे में।
1: और क्योंकि आज शनिवार है, इसलिए हमारे कार्यक्रम में शामिल है आपका पसंदीदा सेगमेंट स्टार्टअप सैटरडे, जहां हम मिलवाएंगे आपको नए आइडियाज, युवा सोच और कुछ प्रेरणादायक स्टार्टअप से।
0: इसके अलावा खेल जगत की ताजा खबरें, जॉब अपडेट्स और कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी होंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे ऐसा भी होता है।
1: तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का ये सफर होने वाला है बेहद शानदार।
0: तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। गीत के बोल है आइसक्रीम, फिल्म द एक्सपोज से हिमेश रेशमिया के आवाज में।

0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम के उस छोटे लेकिन बहुत ही खास हिस्से का, जो कम शब्दों में बड़ी सीख दे जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेरक पंक्ति की।
1: और आज की प्रेरक पंक्ति है, मौसम की तरह जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। समझदार वही है जो हर बदलाव में खुद को बेहतर बनाना सीख ले।
0: वाह आशुतोष, सच ही तो है ये। अगर हम हर बदलती परिस्थिति से कुछ नया सीख लें, तो मुश्किल समय भी हमें मजबूत बना देता है।
1: बिल्कुल ईसा, क्योंकि जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हौसला प्रदान करता है।
0: तो दोस्तों, बदलाव से घबराइए मत, बल्कि उससे अपने बेहतर भविष्य की शुरुआत बनाइए।
1: और इसी सकारात्मक सोच के साथ अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला फिल्मी गीत। गीत के बोल हैं सनी सनी, फिल्म याड़िया से यो यो हनी सिंह के आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से युवा केंद्रित कार्यक्रम युवानी, और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आज की बात का। आज का विषय है बदलता मौसम और बदलता लाइफस्टाइल।
1: आशुतोष, सच कहूँ तो अब मौसम पहले जैसा महसूस ही नहीं होता। कभी अचानक इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता, और कभी बिना मौसम के ही बारिश शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल लीसा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौसम के साथ साथ हमारी आदतें भी बदल जाती है। गर्मी बढ़ी नहीं कि ठंडा पेय चाहिए, धूप तेजी हुई नहीं कि बाहर निकलना कम कर देते हैं, और धीरे धीरे हमारी पूरी दिनचर्या बदलने लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आजकल की लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी ही हो गई है कि हम मौसम के हिसाब से खुद को ढालने के बजाय मोबाइल और स्क्रीन के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं।
0: सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, फिर घंटों ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया, और देखते देखते पूरे दिन स्क्रीन के साथ गुजर जाता है।
1: और इसका असर सिर्फ आंखों पर ही नहीं, हमारी नींद और हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। कई युवा देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर पूरे दिन थकान महसूस करते हैं।
0: यानी मौसम बदल रहा है और उसके साथ हमारा लाइफस्टाइल भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रख पा रहे हैं जितना कि जरूरी है?
1: शायद नहीं। आजकल फास्ट फूड और इंस्टेंट लाइफस्टाइल का दौर है। जल्दी में खाना, कम पानी पीना, घंटों बैठे रहना, ये आदतें धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम कर देती हैं।
0: विशेषज्ञ भी कहते हैं कि हर मौसम अपने साथ कुछ

0: लेकर आता है। जैसे गर्मी में शरीर को ज्यादा पानी चाहिए, हल्का भोजन चाहिए और थोड़ी सावधानी भी।
1: लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे धूप में निकलते समय पानी साथ ना रखना या देर रात तक जागना।
0: और फिर हम कहते हैं, पता नहीं यार, इतनी थकान क्यों हो रही है।
1: लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं।
0: सही कहा ईसा आपने, जैसे कि समय पर सोना, थोड़ा टहलना, घर का संतुलित खाना खाना और दिन भर में पर्याप्त पानी पीना।
1: और सबसे जरूरी, खुद को थोड़ा समय देना, क्योंकि आज की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर और मन की बात सुनना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा ईसा आपने, क्योंकि अगर मौसम बदल रहा है तो हमें भी अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाने ही होंगे।
1: तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या को संतुलित रखिए और मुस्कुराते रहिए।
0: और इसी खूबसूरत बात के साथ अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत, जिसके बोल हैं लापता फिल्म एक था टाइगर से, के और पलक मुच्छल के आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी और चल रही है हमारी खास प्रस्तुति आज की बात। हम चर्चा कर रहे हैं बदलता मौसम, बदलता लाइफस्टाइल पर।
1: दोस्तों, मौसम में बदलाव का असर सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवहार पर भी पड़ता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और कई बार लगातार व्यस्त दिनचर्या हमें मानसिक रूप से भी थका देती है।
0: बिल्कुल आशुतोष, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग काम और पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल सा लगता है।
1: और इसका सबसे बड़ा असर हमारी दिनचर्या पर दिखाई देता है। ना समय पर खाना, ना पर्याप्त नींद और ना ही शरीर को आराम।
0: साथ ही आजकल ऑनलाइन दुनिया भी हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल और इंटरनेट ने जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन कई बार हम जरूरत से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताने लगे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही वजह है कि अब लोग बाहर खेलने या टहलने से ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने लगे हैं। धीरे धीरे शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही है।
0: लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम चाहें तो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी कुछ अच्छी आदतों को शामिल कर सकते हैं, जैसे सुबह थोड़ी देर टहल लेना, योगा कर लेना या हल्का व्यायाम करना, और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना।
1: इसके अलावा मौसम के अनुसार खान पान भी बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में मौसमी फल, नींबू पानी, छाछ और हल्का भोजन शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: और दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कभी-कभी थोड़ी देर परिवार के साथ बैठना, दोस्तों से बात करना या अपनी पसंद का संगीत सुनना भी मन को सुकून देता है।
1: सही कहा आपने, क्योंकि जीवन सिर्फ भागते रहने का नाम बिल्कुल नहीं है बल्कि खुद को संतुलित रखने का भी नाम जिंदगी है।
0: और एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए, बदलता मौसम हमें प्रकृति के करीब रहने का संदेश भी देता है।
1: क्या बात कही है ईसा आपने, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे, पेड़ पौधे को बचाएंगे और पानी की बर्बादी को रोकेंगे, तो आने वाला समय और बेहतर हम बना सकते हैं।
0: बिल्कुल आशुतोष, तो दोस्तों, मौसम बदलना स्वाभाविक है, लेकिन स्वस्थ और सकारात्मक रहना हमारी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी अच्छी आदतें, थोड़ा अनुशासन और सकारात्मक सोच, यही एक बेहतर लाइफ स्टाइल की असली पहचान है दोस्तों।
0: उम्मीद है कि आज की ये चर्चा श्रोताओं आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और अब आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे।
1: और इसी खूबसूरत बात के साथ अब सुनते हैं एक और फिल्म गीत, जिसके बोल हैं जिया रे। फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन के आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना का युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और अब समय है हमारे खास सेगमेंट आज की बात की विशेष प्रस्तुति का। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जो शांत है, सरल है, लेकिन प्रकृति के संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, आज का विषय है विश्व कछुआ दिवस।
1: दोस्तों, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कछुआओं और कछुआ प्रजातियों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि हम उनके घटते प्राकृतिक आवास और बढ़ते खतरों को समझ सकें।
0: और ये पहल वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू नामक संगठन ने की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को कछुआओं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
1: दोस्तों, अक्सर हम कछुए को केवल एक धीमी गति से चलने वाला जीव समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति के सबसे प्राचीन और संतुलन बनाए रखने वाले जीवों में से एक है।
0: कछुआ सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। इनकी सबसे खास पहचान है इनका कठोर कवच, जो वास्तव में उनकी पसलियों से विकसित होता है, और उनके शरीर की एक ये भी भिन्न हिस्सा होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा हिस्सा आपने, क्योंकि कछुए का कवच जो होता है वो कछुए के शरीर

0: का एक अभिन्न हिस्सा होता है, यानी कछुए अपने कवच को ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही उससे बाहर आ सकते हैं। यह कवच उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
1: दोस्तों, एक और रोचक बात यह है कि कछुए और टॉर्टोइज एक जैसे नहीं होते हैं। टॉर्टोइज पूरी तरह स्थलीय जीव होते हैं, जबकि कछुओं की कई प्रजातियां जल और स्थल दोनों जगह दिखाई देती हैं।
0: और दोनों ही स्वभाव से शांत, शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। ये प्रजनन के समय भूमि पर घोंसले बनाकर अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं।
1: कछुओं की एक और खास विशेषता ये है कि ये असमतापी और बहुउष्मी जीव होते हैं, यानी ये अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार नियंत्रित करते हैं।
0: इसी कारण इनका चयापचय धीमा होता है और ये लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के भी जीवित रह सकते हैं। यह विशेषता इन्हें प्रकृति में एक अलग और अनोखी पहचान देता है।
1: दोस्तों, अगर हम प्रजातियों की बात करें तो दुनिया में कछुओं की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे समुद्री कछुओं में लॉगरहेड, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, लेदरबैक, ऑलिव रिडेल और फ्लैटबैक प्रमुख हैं।
0: वहीं मीठे जल में पाए जाने वाले कछुओं में स्नैपिंग टर्टल, पेंटेड टर्टल, रेड ईयर्ड स्लाइडर, स्पाइनी सॉफ्ट सेल और मस्क टर्टल जैसी प्रजातियां शामिल हैं।
1: भारत की बात करें तो यहाँ कछुओं की लगभग 30 मीठे जल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 26 को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, जो उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
0: और भारत के असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कछुआ विविधता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ नदियों और आर्द्र भूमियों में इनकी कई प्रजातियां देखी जा सकती है।
1: इसके अलावा भारत में 5 समुद्री कछुआ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो सभी संरक्षित श्रेणी में आती हैं। इनमें ऑलिव रिडेल, ग्रीन, लॉरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक शामिल हैं।
0: दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इनमें से कई प्रजातियां आज खतरे में हैं। ऑलिव रिडेल, लॉगरहेड और लेदरबैक को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ग्रीन टर्टल को लुप्त प्राय माना गया है और हॉक्सबिल टर्टल गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है।
1: यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर समुद्री और जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। अगर कछुओं की संख्या घटती है, तो जल जीवों का संतुलन भी बिगड़ सकता है।
0: तो दोस्तों, कछुआओं के सामने कई बड़े खतरे हैं, जैसे आवास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और अवैध वन्य जीव व्यापार।
1: और दुख की बात यह है कि प्लास्टिक कचरा कई बार समुद्रों और नदियों में कछुओं के लिए जानलेवा साबित होता है। वे इसे भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है।
0: लेकिन इसके साथ ही संरक्षण के प्रयास भी लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश में कुकरेल, लखनऊ, सारनाथ, वाराणसी, चंबल, इटावा और प्रयागराज जैसे स्थानों पर कछुआ संरक्षण केंद्र विकसित किए गए हैं।
1: इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कछुआ संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो कैंपा जैसी योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर रहा है, और वन विभाग अवैध तस्करी पर भी लगातार निगरानी रखता है।
0: दोस्तों, कछुआ हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखो।
1: और शायद यही इस दिवस की सबसे बड़ी सीख भी है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम प्रकृति के और इस जीवों की रक्षा में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे।
1: और इसी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश के साथ अब समय हो गया है एक सुंदर फिल्मी गीत का आनंद लेने का।
0: गीत का आनंद लीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना का युवा केंद्रित कार्यक्रम युवानी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना का युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और अब समय है उस खास सेगमेंट का जिसका इंतजार कई युवा बड़े उत्साह से करते हैं, यानी स्टार्टअप सैटरडे।
1: दोस्तों, यह सेगमेंट उन सभी युवाओं के लिए है जो सिर्फ नौकरी पाने का सपना नहीं देखते, बल्कि अपने आइडिया से कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया खड़ा करना चाहते हैं, यानी खुद के पैरों पर खड़ा होने की सोच, खुद का रास्ता बनाने की सोच।
0: और सच कहें तो आज का समय आइडियाज का समय है। अब बड़ा ऑफिस होना जरूरी नहीं, बल्कि बड़ा सोच होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अच्छी बात कही है ईसा आपने, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है किसी समस्या को पहचानना और उसका समाधान ढूंढना।
0: बिल्कुल आशुतोष। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उपयोगी आइडिया पर बात करेंगे जो हमारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे गांवों और छोटों शहरों में कई लोग हस्तशिल्प बनाते हैं, खेती करते हैं और घरेलू उत्पाद तैयार करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच बड़े बाजारों तक नहीं हो पाती है।
0: और यहीं से एक आइडिया जन्म लेता है। अगर कोई युवा इन उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक तो पहुंचाए, तो यह एक मजबूत स्टार्टअप बन सकता है।
1: क्या बात कही है इस आपने, क्योंकि इसमें शुरुआत के लिए किसी बड़े निवेश की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट और सही योजना, इतना ही काफी है।
0: और धीरे धीरे यह छोटा सा कदम कई लोगों के लिए रोजगार का रास्ता खोल सकता है, जैसे पैकेजिंग, डिलीवरी, मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन।
1: तो दोस्तों, एक और बहुत जरूरी स्टार्टअप आइडिया है वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मॉडल का।
0: आज प्लास्टिक और कचरा एक बड़ी समस्या बन चुका है। अगर युवा मिलकर छोटे स्तर पर कचरा संग्रहण और रिसाइकलिंग की शुरुआत करें, तो ये पर्यावरण और रोजगार दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
1: और इसकी अच्छी बात यह है कि ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार की कई योजनाओं में भी सहयोग मिलता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई सपोर्ट सिस्टम।
0: लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप की दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है जानते हैं?
1: क्या है बताइए आप।
0: धैर्य और निरंतर सीखना।
1: सही कहा इस आपने, क्योंकि कोई भी आइडिया एक दिन में सफल नहीं होता है, उसके पीछे समय, मेहनत और लगातार सुधार की प्रक्रिया शामिल होती है।
0: कई बड़ी कंपनियां जो छोटे कमरे में या छोटे आइडिया से शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
1: और यही बात हर युवा को याद रखनी चाहिए, छोटा आइडिया भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है, तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे धीरे धीरे आगे भी बढ़ाइए।
1: क्योंकि हो सकता है अगला बड़ा स्टार्टअप आप ही का इंतजार कर रहा हो।
0: और इसी प्रेरणादायक सोच के साथ अब समय हो गया है एक शानदार फिल्मी गीत का आनंद लेने का।
1: तो गीत का आनंद लीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना का युवा केंद्रित कार्यक्रम युवानी। गीत के बोल है तू ही मेरा, फिल्म जन्नत 2 से शफकत अमानत अली के आवाज में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अब समय है हमारे स्पोर्ट्स अपडेट सेगमेंट का, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार जारी है।
4: सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए यानी पिछले मुकाबले की, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला।
3: दोस्तों, इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
4: एसआरएच की ओर से अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दी, जबकि ईशान किशन ने 79 रनों की शानदार पारी खेली और हेनरिक क्लासन ने भी तेज 51 रन जोड़कर रन गति को और बढ़ा दिया।

0: अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन बनाकर टीम को 255 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओर से गेंदबाजी में रसिक सलाम डार ने 2 विकेट हासिल किए।
1: लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन इतने बड़े स्कोर के सामने दबाव बढ़ता गया।
0: आरसीबी की ओर से वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार ने उपयोगी पारियां खेली, लेकिन टीम 20 ओवर में 200 रन तक ही पहुंच सकी और यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 55 रनों से जीत लिया।
1: इस मैच में शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: और अब बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल की ओर। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जबकि आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफायर टीम बन चुकी है।
1: दोस्तों अब नजर डालते हैं आज यानी 23 मई के आईपीएल 2026 के 68 मुकाबले पर। यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा।
0: यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 से खेला जाएगा।
1: दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है, खासकर पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में जीत जरूरी है।
0: पंजाब किंग्स इस समय लगातार हार के बाद दबाव में है और टीम चाहेगी कि इस मुकाबले में वापसी की जाए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेंगे।
1: पिच की बात करें तो एकाना स्टेडियम की पिच आम तौर पर धीमी मानी जाती है। यहाँ स्पिन गेंदबाज को मदद मिलती है और बड़े स्कोर बनाना आसान नहीं होता है।
0: तो ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब किंग्स अपनी बल्लेबाजी से बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते हैं या लखनऊ के गेंदबाज एक बार फिर मैच पर पकड़ बना लेते हैं।
1: दोस्तों आज का ये मुकाबला पूरी तरह रोमांचक से भरा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है।
0: तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम आज की जीत की बाजी मारती है।
1: तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गाना जिसकी बोल है इश्क सूफियाना, गाया खे कमाल खान।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना का युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और अब समय है हमारे खास सेगमेंट का रोचक तथ्य।
1: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कछुए के बारे में। एक ऐसा जीव जो शांत है, सरल है, लेकिन अपने अंदर प्रकृति के कई रहस्य समेटे हुए है।
0: सबसे पहले ये जानना दिलचस्प है कि कछुआ पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये करोड़ों वर्षों से धरती पर मौजूद है और डायनासोर के समय से भी इसका अस्तित्व रहा है।
1: कछुए की सबसे खास बात उसका कवच है, लेकिन यह कोई बाहरी खोल नहीं है। यह वास्तव में उसकी पसलियों और रीढ़ की हड्डी का ही हिस्सा होता है जो उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है।
0: यानी कछुआ अपने कवच को कभी छोड़ ही नहीं सकता, यह उसके शरीर का स्थायी और अभिन्न अंग होता है।
1: एक और रोचक बात यह है कि कछुए बहुत लंबी उम्र तक जीवित रह सकते हैं। कुछ प्रजातियां तो 100 साल से भी ज्यादा जीवित पाई गई हैं।
0: कछुओं की गति धीमी जरूर होती है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, इसीलिए इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
1: कछुए जमीन और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सभी कछुए टॉर्टोइज नहीं होते। टॉर्टोइज केवल स्थलीय यानी जमीन पर रहने वाले कछुए होते हैं।
0: कछुओं का प्रजनन व्यवहार भी बहुत दिलचस्प है। ये अपने अंडे जमीन में रेत या फिर मिट्टी में गड्ढा बनाकर देते हैं और फिर उन्हें वहीं छोड़ देते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का युवानी कार्यक्रम आप अपने अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीद है कि आज की यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञान, जागरूकता, मनोरंजन और प्रेरणा का सुंदर संगम रही होगी।
0: और साथ ही दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर हमें बड़ा बदलाव लाने की शिक्षा देती है, इसीलिए खुद को बेहतर बनाते रहना हमारी असली प्रगति है।
1: तो हमेशा याद रखिए, मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता का असली कुंजी है।
0: और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है।
1: अगर आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया तो हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं feedback@irpatna@gmail.com पर।
0: तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का, लेकिन यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं होगी। फिर मिलेंगे नए विषय, नए सोच और नई ऊर्जा के साथ।
1: तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
0: आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मगही कार्यक्रम मांगते।

दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, गर्मी से हाल बेहाल हो रहे है, इतना कि बार बार तरास लग रहे है, जबकि दिन में कोशिश कर रही है कि पंखा भीड़ से नहीं उठूं, मगर इतना ने गर्मी है कि कुछ कहे के नहीं। तो ई गर्मी में हम सब के अपन सेहत के खास ख्याल रखे के है। तो एकरा लगी सबसे पहले तो भाई घैला के पानी जरूरे पीथिन, अगर बाहर सी जा हथिन तब भी बोतल भर के पानी छाता गमछा से देह भुजा ढक लेथिन, आ खाली पेट घर से कबहियो नहीं निकलथिन। और खाए लेल हरियर तरकारी फल फलहरी जे रसदार हो सेकरे खाथिन, ज्यादे तलल भुनल खाए से बसथिन। इस समय मट्ठा सत्तू आम पन्ना बेल के शरबत ग्लूकोज नारियल के पानी के खूब पीथिन, चाहे फल के रस केतारी के रस भी पी सक हथिन। और कोशिश करथिन कि दोपहरिया में ज्यादे बाहर नहीं निकलथिन, पिन्हे में सूती कपड़ा ज्यादे पहनथिन, नीमन से सुबह शाम के नहाना और सैर व्यायाम भी बहुते जरूरी है। और एक बार फिर से कह दिए कि 8 से 10 लीटर पानी जरूर पीथिन, कहे कि इस समय पानी के कमी बहुते जल्दी हो जाए, ज्यादे काम सुबह और शाम के समय कर लेथिन, एकरा से दोपहरिया के बैठे वाला काम जे है ऊ कर सक हथिन। और ज्यादे गर्म तासीर के सामान अभी नहीं खाथिन, ठंडा ठंडा चीज खैला से पेट के लहर नहीं उठा है। और फिर भी कुछो परेशानी हो जाए तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेथिन, भाई स्वस्थ रहथिन मस्त रहथिन बीमारी से बचल रहथिन। और एक साथ साथ हम अपने सब लगी लेके अली है देवी गीत, गायक कलाकार रहथिन आरती माला, तो सुनथिनी देवी गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता लोगिन, अभी गर्मी के मौसम चल रहे है और इस समय में खास करके ज्यादा बिजली और पानी के खपत होब है, मगर खपत करथिन भाई हिसाब से, बेफिजूल के नहीं। जे प्रकृति से मिल रहे हैं ओकरा बेकार में बर्बाद केला कोई समझदारी थोड़े है। कोई भी चीज के बर्बाद नहीं करे के चाहिए। फिर ई तो पानी और बिजली के बात है, जेकरा बिना रहे से अब सोचले भी नहीं जा सक है कि भाई ई आय के समय में बहुते जरूरी है, तो एकरा बर्बाद नहीं करथिन, हिसाब से खर्चथिन। कितना के देखा ही है कि मोटर चला के भूल जाथिन बंद करना, और हमें पानी गिरित रहा है। पानी के नल चाहे कोई तरह से भी पानी बर्बाद करना सही नहीं माना जाए, तो ये सब करे से बचथिन। कितना घर में देखा ही है कि पंखा टीवी बॉल बत्ती खोल के इन्ने उन्ने घूमित रहा हथिन, तो ये कौन होशियारी है? ये तो नहीं है भाई, ये सब कैला से ठीक बात नहीं है। तो हम सब के जे भी बचेबे से कहीं ना कहीं कोई जरूरतमंद के काम देवे करते, तो खाली अपन आलस और लापरवाही में ये सब करना बिल्कुल एक गलत बात है। करना है तो कुछ सही काम करथिन, छोट बड़ पेड़ पौधा लगाथिन जितना संभव हो, पक्षी के लिए दाना पानी रखथिन जिनका से उनका भी पेट भर सके। हम सब सामाजिक प्राणी है, तो इस समाज के कल्याण लगी बड़ नहीं तो छोट छोट कदम लेथिन, और तो जे ले सकथिन से जरूरे लेथिन। और आगे हम अपने सबके सुनवा रही है भेंट वार्ता मगही भाषा में पत्रकारिता की संभावनाएं। भेंट वार्ताकार हथिन हेमंत कुमार और हिनका से बातचीत कर रही है हम दिव्या भारती। श्रोता लोगिन, पत्रकारिता में अब बहुत सा युवा वर्ग अपन पहचान बनावे के होड़ में लगल हथिन, और आजकल तो अपन अपन भाषा के भविष्य उज्ज्वल करे के लगी उमें भी पत्रकारिता करल चाह रहल थीन है, जे ठीक भी है। कहे कि कहल जाए कि हमनी के अपन क्षेत्र के सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है अपन भाषा के सुरक्षित रखना। तो आज हम सब बात कर रही है इहे विषय पर कि मगही भाषा में पत्रकारिता के संभावना की है। तो ई विषय पर बात करे लगी हमनी के स्टूडियो में आयल हथिन हेमंत कुमार जी। तो अपने के बहुत बहुत स्वागत है हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी, सबसे पहले हम जानल चाह रहे हैं कि मगही भाषा में पत्रकारिता के की संभावना है।
4: मगही भाषा में पत्रकारिता के जी बहुत सारी संभावना है
3: जी।
4: विद्वान भाषाविद जिनका आधुनिक युग के नयका ग्रियसन कहल जा है, उरास बिहारी पांडे गया में लोक साहित्य संगम नाम के संस्था बना के एक साथ मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका इस सबके विकास ले जोरदार ढंग से काम कैल का
3: जी।
4: उनका सड़क सिधार गेला के बाद ही काम पूरे रुक गेल
3: जी।
4: इले अभी भारी जरूरत है कि मगही पत्रकारिता निकालल जाए। सब विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार के साथे साथ गांव देहात में रहे वाला जो मगही भाषी भाई बहिन हथिन, उस सबके धर्म होबो है कि मगही पत्रकारिता के निखारथिन। और ठाकुर राम बालक सिंह, योगेश जी, रास बिहारी पांडे, श्रीकांत शास्त्री और डॉक्टर रामनंदन जी के संघर्ष और विरासत के आगू बढ़ाथिन। हमारा गौरव है कि बिहार में मगही भाषा बोले वाला बड़का क्षेत्र में फैलल हत। मगह क्षेत्र में पत्रिका के फेरू से प्रकाशन के भरपूर संभावना है
3: जी।
4: एकरा तलाशे और तराशे के जरूरत है। मगही पत्रिका के और मगही पत्रकार

0: के हियाँ के लोग हाथों हाथ पान फूल और अक्षत लेके स्वागत करथिन। मगही पत्रकारिता के नया जीवन देवे ले नयका विद्वान के साथे साथ आम मगही के माथा पर मुरेठा बांध के आगू आवे पड़ते। अपन अपन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सरकार से भी मांग रखथिन कि पत्रिका के वास्ते धन संग्रह और स्थायी कोष के इंजाम होवे के चाहिए। अब तो सोशल मीडिया के भी जोर शोर से दौड़ चल रहा है
1: जी।
0: मगही पत्रकारिता के प्रिंट मीडिया के साथे साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाल जा सके है। इस सब क्षेत्र में मगही पत्रकारिता के असीम संभावना है
1: जी।
0: जो सबके सहयोग और साथ मिलत तब मगही पत्रकारिता सफल हो जात। वास्तव में मगही पत्रकारिता के संभावना प्रकाशन और सफलता मगह के उज्जवल और समृद्ध भविष्य के परिचायक होवत।
1: अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने के कैसे झुकाव होले?
0: विद्यार्थी जीवन से जी ही हमरा पत्रकारिता के क्षेत्र में झुकाव होल।
1: हाँ,
0: चूंकि गांव में एगो पुस्तकालय चलो हल और वहाँ तरह तरह के पत्र पत्रिका आबो हल, तो हम लोग वहाँ जा कर के हमरा के पढ़ो हली पुस्तक सबके अखबार सबके, और पढ़ते पढ़ते लिखे के भी अभ्यास धीरे धीरे बने लगल। गांव में नाटक होबो हल ओकरा से जुड़नो, तो धीरे धीरे अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार में कुछ लिखे के ललक जगल
1: जी।
0: तो उहे माध्यम से जी धीरे धीरे हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आइनो
1: जी। अच्छा, मगही भाषा में पत्रकारिता के की जरूरत है?
0: अखने एक बात तो हम भुला गलिए, अखने तो शरद ऋतु के पावन नवरात्रा से मगध के सभ्य घर अंगना के वातावरण मैया दुर्गा के सप्तशती पाठ और आरती के गुण से भक्तिमय होल है। तो सबसे पहले हम सभ्य मगहियन भाई बहन के दशहरा पर्व के ढेर मनी बधाई और शुभकामना देबो ही। जहाँ तक मगही भाषा में पत्रकारिता के की जरूरत है ये प्रश्न के बात है, तो हम ओकर उत्तर में कह सको ही कि कोई भी भाषा और साहित्य के ज्यादा से ज्यादा विकास और प्रचार प्रसार लगी पत्रकारिता के जरूरत पड़ो है। मगही भाषा एगो बड़ी पुरान और समृद्ध भाषा है, लेकिन लगातार संघर्ष और उत्थान पतन के साथे साथ एकर विकास जे गति से होवे के चाहिए तो वैसन नहीं हो रहा है। एकर थमल गति के बढ़ावे ले और फिर से नया ज्योति जगावे ले पत्रकारिता बढ़िया माध्यम हो सके है। यह से कहल जा सके है कि अखनौका समय में मगही पत्रकारिता के बड़ी जरूरत है। मगही पत्रकारिता के जिंदा होला से मगह के साहित्य कला संस्कृति रीति रिवाज और पर्व त्यौहार देश दुनिया के मानचित्र पर अपन खास जगह बनैते
1: जी। मगही भाषा में पत्रकारिता के की इतिहास है?
0: मगही भाषा में पत्रकारिता के इतिहास बहुत ज्यादे पुरान नहीं कहल जा सके है।
1: अच्छा,
0: 1947 में देश के आजादी के बाद मगही भाषा में नई चेतना और जागृति के सुगुवाहट होल। तब पुरोधा बन के ठाकुर रामबालक सिंह, योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश, डॉक्टर रामनंदन, मथुरा प्रसाद नवीन, श्रीकांत शास्त्री, शालिग्राम भारती, तारकेश्वर भारती वगैरह आगू अला। ठाकुर रामबालक सिंह और श्रीकांत शास्त्री सबसे पहले 50-60 के दशक में पटना से मगही नामक पत्रिका प्रकाशित करे के शुरुआत कैलका, जे तखने अपन साहित्य से धूम मचा दलक। उनखर बाद हास व्यंग के जानल मानल कवि योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश मागधी नाम से पत्रिका निकललका। उहे समय में लगले पीठ बिहार नाम से बिहार मगही मंडल के तत्वावधान में डॉक्टर रामनंदन जी पत्रिका के शुरुआत कैलका, जे आज तक मगही के ज्योत जगा रहल है। साल 2009 में योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश जी के निधन के बाद उनखर मागधी के प्रकाशन बंद है। शालिग्राम भारती रांची से कोपल नाम के पत्रिका निकलल थीं अजी, जकर भाषा साहित्य और व्याकरण बड़ी ऊंचगर हल।
1: अच्छा।
0: मगही के झंडा उठावे वाला आंदोलनकारी साहित्यकार बाबूलाल मधुकर के रक्त मंजरी भी मगही भाषा के पत्रकारिता के क्षेत्र में निम्न योगदान दिलक, और संपादक प्रोफेसर अभिमन्यु प्रसाद मौर्य पटना से मगही भाषा के 100 अंक से ऊपर लगातार अलका मागधी नामक पत्रिका निकाल के कीर्तिमान स्थापित कैलखिन। एकर अलावे मगही के कबीर कहलावे वाला जनवादी कवि मथुरा प्रसाद नवीन के संपादन में सारथी पत्रिका भी मगही पत्रिका के उत्थान में बड़गो योगदान दिलक।
1: अच्छा।
0: अभी सारथी के संपादक मिथिलेश जी हथिन, हालांकि एकर नियमित प्रकाशन नहीं हो रहा है,
1: हाँ
0: मगही पत्रिका

0: पनसोखा भी सबके मन मोहलक।
1: जी
0: वरिष्ठ कवि और लेखक रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर के संपादन में छपे वाला मगही संवाद भी मगही पत्रकारिता के समृद्ध कर रहा है।
1: जी
0: यह कड़ी में सुमंत जी के टोला टाटी भी सफल पत्रकारिता के उदाहरण है।
1: अच्छा अच्छा मगही भाषा में पत्रकारिता से की लाभ है?
0: मगही भाषा में पत्रकारिता से तो बहुत सारा जी लाभ है।
1: जी
0: सबसे पहले तो ये लाभ है कि पढ़ल लिखल आदमी से ज्यादा मगह क्षेत्र के आम आदमी उनका में अपन भाषा के प्रति सम्मान आत्मविश्वास और गौरव के भावना बढ़ल।
1: जी
0: नया नोहर लिखवैया के रचना प्रकाशित करे के मौका मिलल। एकरा से पुरनकन के साथे साथ नयकन लेखक के
1: जी
0: एगो बढ़िया और बड़गो जमात जी तैयार हो गेल
1: जी
0: जे सब मगही भाषा के मजबूत करे ले अलग अलग विधा में रंग बिरंग के रचना प्रस्तुत कैल थीन। मगही भाषा के खुशबू दूर दूर तक फैलल आ हमनी मगहियन अपन बात के देश दुनिया में पहुँचावे में सफल हो लिए। हमर विचार संस्कार और आहार व्यवहार से दोसर जगह के लोग प्रभावित होल थीन
1: जी जी
0: और आगे भी होते रहथिन जब तक मगही पत्रकारिता चलते रहते जिंदा रहते।
1: जी वर्तमान समय में मगही पत्रकारिता के की स्थिति है?
0: वर्तमान समय में मगही पत्रकारिता के हालत जी कोई तरह से बढ़िया नहीं कहल जा सके है।
1: जी
0: पहलौका पत्रिका रसे रस बंद हो गेल और नयका पत्रिका संसाधन के अभाव में गिर बजर रहल है। जेकरा संभारे ले हमनी मगही भाई बहन के आगू आवे के चाही। सबसे पहले जे पत्रिका निकल रहल है
1: जी
0: ओकरा मजबूती से निकलते रहे के प्रयास होवे के चाही और समय के मुताबिक जरूरत देख के मगह के हर क्षेत्र से मगही पत्रिका प्रकाशित होवे के चाही और मगही के विकास में कोई कोर कसर नहीं रहत।
1: अच्छा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में पत्रकार के की भूमिका है?
0: सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में जी पत्रकार के तो बड़गो को भूमिका है।
1: जी
0: अपने देख रहल थीन है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारा लोग इतना बढ़िया बढ़िया बात लिखल थीन। आज़ादी के आंदोलन में लोग के आंदोलित कैल थीन अपन बात लिख करके देश प्रेम के भावना जगेलखिन और आज़ादी के बाद देश के नया सिरे से बनवे में समाज के समरस करे में समाज के सहिष्णु बनावे में उनकर लेखनी बड़गो काम कैलकै। उनकर लेखनी के माध्यम से समाज अच्छा बने के प्रयास कर रहले है और नई पीढ़ी भी उ रास्ता पर चले में लगल है। तो हम कहबन कि पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगावे में और समाज के सद्भावना बढ़ावे में बड़गो भूमिका है और लगी पत्रकारिता और पत्रकार के भूमिका सदैव हमर देश में हमर समाज में जी बनल रहते यह हम कहबन।
1: जी बहुत बढ़िया बहुत निमन वाह हम सब जान ली कि मगही भाषा में पत्रकारिता के की संभावना है और हेमंत कुमार जी से बढ़िया बातचीत से जानकारी मिलल तो इतना निमन जानकारी देवेला हेमंत कुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी अपने के भी धन्यवाद श्रोता बंधु के भी धन्यवाद।
2: अभी हमने सब सुन रही भेंट वार्ता मगही भाषा में पत्रकारिता के संभावनाएं भेंट वार्ता कर रहे थे हेमंत कुमार और हिनका से बातचीत कर रही हम दिव्या भारती। अब सुनथिन झूमर आरती माला से।

वाह, बहुत नीमन झूमर हले। आरती माला के इतना नीमन नीमन गीत सुनावेला, बहुत एक धन्यवाद। श्रोता लोगिन देखिन, फिर से एक बार कहूँ कि भाई गर्मी बहुते बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधा जितना हो सके लगाथिन। अब तो घर के अंदर भी रखे वाला तरह तरह के पेड़ पौधा आ गए है, तो भाई पेड़ पौधा जरूरे लगाथिन, तभी हमनी सब गर्मी से बच सक। एक साथ साथ हमनी के समय ओरिया रहा है, तो अपन दिव्या के विदा देथिन। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना हवे। अब रउआ सभी लोग नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि सरकारी नौकरी नागरिकन के जीवन में बेहतर और आसान बनावे के महत्वपूर्ण माध्यम हवे। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वां रोजगार मेला के उद्घाटन कैलन। प्रधानमंत्री कहले कि देश अपन कर्मयोगी पर भरोसा जतौले बा। अब ई उ लोग के जिम्मेदारी हवे कि उ लोग अपन लगन, आचरण और रोजमर्रा के काम से ओ भरोसा के मान रखस और ओकरा के और मजबूत करस। प्रधानमंत्री इहो कहले कि भारत विश्व के कई गो देश के साथे साझेदारी भी कर रहल बा, जेकर मकसद बा कि देश के नव युवा लोगन के अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलावल जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट के उद्घाटन कैले। श्री चौधरी कहले कि हमनी के संकल्प बा कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के दम पर बिहार डिजिटल क्रांति में अग्रणी राज्य बने। वो आगे कहलन कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था के और ज्यादा प्रभावी बनावल जाए। श्री चौधरी इहो बतावले कि इस समिट के मुख्य उद्देश्य राज्य के टेक्नोलॉजी हब बनावे के और युवा लोगन खातिर कौशल विकास के नया अवसर देवे के हवे। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता लोगन के साथ हजारों के संख्या में छात्र भी शामिल भइल रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 21 जून के होवे वाला

0: नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थी लोगन के सरकारी बस में मुफ्त आवे जाए के सुविधा देवे के घोषणा कैले बाड़न। श्री चौधरी सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि एकर उद्देश्य दूर दराज के इलाकन से आवे वाला परीक्षार्थी लोगन के बिना कोनो आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचावे के हवे। मुख्यमंत्री के तरफ से जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था और मठ मंदिर से छात्र और अभिभावक लोगन खातिर पीए के पानी और सत्तू के व्यवस्था में सहयोग करे के अपील कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि राज्य में अगला 5 बरिस में 1 लाख शिक्षक लोगन के नियुक्ति होई। एकरा तहत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षक लोग के बहाली कैल जाये। एकरा खातिर हर साल जुलाई महीना में नियुक्ति से जुड़ल विज्ञापन जारी कैल जाये। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी शिक्षक लोग के ट्रांसफर खातिर नया नीति बनावे के भी निर्देश दिले। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपया के बजट पारित कैल गईल। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित भइल बैठक में शिक्षा व्यवस्था के बेहतर बनावे, छात्रावास में बेहतर सुविधा उपलब्ध करावे और पुस्तकालय के आधुनिक बनावे से जुड़ल प्रस्ताव पर चर्चा भइल। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजय कुमार सिंह अपन भाषण में विश्वविद्यालय के उपलब्धि के जानकारी दिलान। ए मौका पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के बाकी सदस्य लोग भी मौजूद रहले। नीरज कुमार आकाशवाणी से अपन विशेष बातचीत में सीनेट बैठक में भइल चर्चा के संक्षिप्त जानकारी दिलन। भाकपा माले के तरफ से राज्य में शिक्षा व्यवस्था में भइल गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थी लोगन के साथे भइल नाइंसाफी और नीट पेपर लीक मामला के लेके आंदोलन के घोषणा कैल गई। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत बेरा कहलन कि 24 मई के पटना में विरोध प्रदर्शन कैल जाये और राज्य सरकार पर आम लोगन के समस्या के अनदेखी करे के आरोप लगवले बाड़न। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहले बाड़न की ऊर्जावान कार्यकर्ता लोग ही पार्टी के असली ताकत हवे। श्री नवीन प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन करत बेरा ई बात कहले। वो इहो कहले कि पार्टी कार्यकर्ता लोग के तरफ से पूरा निष्ठा से काम कैल जा रहल बा। पार्टी के लोग के ऐसन प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिली। ए मौका पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई गो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लोग मौजूद रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल समापन सत्र में शामिल हुई हैं। प्रदेश के अलग अलग भाग में मौसम के मिलल जुलल रूप देखे के मिल रहल बा। राज्य के दक्षिणी हिस्सा में भीषण गर्मी और लू के स्थिति बनल बा। वही जे उत्तर पूर्वी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी पानी की स्थिति बनल बा। मौसम विभाग के तरफ से जारी पूर्वानुमान में कहल गईल बा कि अगला 24 घंटा के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिला के विभिन्न स्थान पर आंधी बारिश और वज्रपात के आशंका बावे। वही जे पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थान पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनल रही। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म जेब्रा से इस गीत को, जिसके लिए आवाज दिया है संतोष वेंकी और अयारा उड्डुपी ने।

0: अमाल मलिक और अरिजीत सिंह के गाए फिल्म वेदा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटम् राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजी

0: जीविका मेलकम संपूर्णे देशे सप्तचत्वारिंशत् विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। संपूर्ण देशात् चयनितः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मंत्रालये, गृह मंत्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालये, उच्च शिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मंत्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् संपूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमंत्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमपर्यन्तं भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढसंकल्पेन कार्यं करोति।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान पदाधिकारिणः IGOT इति कर्मयोगी मंचस्य सम्यक लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्री मोदी विश्वासः प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र 1100+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे 60,000+ नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् 4 कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाबराज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु 29वां आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र 81,209 लाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते RCF संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्य इंधन मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रीय संस्थानरूपेण परिवर्तितम् अस्ति, यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु 5 वर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति।

0: नमस्कार आनंद भाई।
1: नमस्कार उदय भाई।
0: क्या आनंद भाई, का हाल चाल? सब बढ़िया बा?
1: हाल देखो कैसे का कहियो हाल। अभी तो कविता याद आ भाई। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर बगारे बादल, रिमझिम बूंदे बरसारे बादल, झमाझम पानी बरसारे बादल। इतना गर्मी, इतना गर्मी।
0: कविता
1: अब बादल के खोज हो रहे
0: हैं। बड़ा लइकाई में कविता हमने के पढ़ी, लेकिन इतना तहार यादाश्त बढ़िया बा ये गर्मी में, तो हमारा तो बुझाता है कि टॉनिक जो बा ज्यादा मिलल बा।
1: अच्छा तो गर्मी जब पड़े है तो सभ्य टॉनिक देह में नजर आवे लगा है ना? आ नहीं पढ़ला तो समझो तो मैंने मोटा बस्ता वाला आदमी है।
0: आनंद भाई बात सही बा।

0: गर्मी जो न रफ्तार में अभी बा वो निश्चित रूप से लोग के बेचैन कर दे बा। और अभी जे हमनी का खाला कि ये बात सही बा कि मौसम में कुछ बदलाव के चलते बीच बीच में वर्षा हो जाला, लेकिन अभी जौन संभावना मौसम विभाग के तरफ से व्यक्त कईल जा रहा बा ओमे जे बा एने बरखा होखे के संभावना
1: नहीं
0: कम बा, तो इस समय में सावधानी ही जे बार और बचाव हो सके।
1: सावधानी ये गुनी भी जरूरी है उदय भाई, कहे कि जब पानी नहीं पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, तो लू के संभावना, हीट स्ट्रोक के संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए।
0: और इस दशा में अंदर हमने के कई तरह से अपन बचाव करे के चाहिए। बचाव में ये भाई कि एक तो हमने का निकली ना उस समय में जब तेज धूप होके खास करके 12 बजे से लेकर के 3, 3:30, 4 बजे तक के जो समय होला, जब सूरज के धूप सीधा सीधा आदमी का शरीर पर पड़ेला तो माथे पर पड़ेला, असर ऊपर ज्यादा हो जाए।
1: बात तो सही है उदय भाई, लेकिन जब जरूरी रहे तो निकल ही पड़े है, तो ओकरा लगे थोड़ा सावधानी बरत के निकले के चाहिए, है ना। छाता लेला, गमछा लेला माथा पर, पानी पी ले बढ़िया से, खाली पेट नहीं रहे, ये सब सोचे के चाहिए। कपड़ा हल्का रहे।
0: पहले हमने की है जब खेती बाड़ी में, हमने के बुजुर्ग लोग खेती बाड़ी में जुड़ल रहे तो वहाँ सभे जेबा वो एगो गमछा साथ रखे।
1: हाँ,
0: लेकिन बदलत दौर में अभी गमछा राखे के प्रवृत्ति जेबा धीरे धीरे वो फैशन से जोड़ के लोग ही समझे लागल कि ये बात तनी सा
1: पिछड़ापन के निशानी हो। अच्छा, अब तो छाता भी मतलब दूर हो गए, लोग गर्मी में छाता भी लेके निकल हल्की। अब कुछ हो है तो सनस्क्रीन लगा लो, ओकरे लगा के निकल, तजरी मुंह पर झाई नहीं पड़त, रौदा के असर कम होवत, यह सब तो चल रहे है। लेकिन ये सही उपाय नहीं है। उपाय तो सही ये है कि गमछा लेके चला, बच्चा लू से, गर्मी से, रौदा से बचे के प्रयास करे, काम पड़े तो उतना उपाय करके चला, और यदि लू मारिए दलक तब उदय भाई तुरंत डॉक्टर से संपर्क करा। घरेलू उपाय भी बता भाइयो, आम के, कच्चा आम के आग पर पका ला, चाहे पानी में खौला ला, और ओकरा में काला नमक जरा बिटनून हमनी कही, जीरा भूंज के जरा जिरमाइन कही डाल कर करके, और ओकरा गुद्दा निकाल कर करके मिला के बना के आम के पन्ना जरा कहे चाहे शरबत कहल जाए, और पिया बहुत फायदा करे है। और जो कर छिलका है ओकरा देह पर रगड़ के आधा घंटा रह दे, 45 मिनट रह दे, और नहा ला, देखा कैसे ठीक हो जाए लू के मारल।
0: हाँ निश्चित आनंद भाई, ये तो उपाय बढ़ ले बा। एक अलावे यदि हमनी का पहले ही लू के असर ना होके एक खातिर भी बहुत सब उपाय कर सकीले।
1: हाँ,
0: खास तौर पे हमनी के प्रकृति जीवा वो हर मौसम खातिर हमनी के कुछ बचाव के भोज्य पदार्थ भी।
1: हाँ, खाना तो बहुत जरूरी है।
0: तो यह समय में जैसे हमनी के खीरा, ककड़ी, लालमी,
1: तरबूज,
0: तारबूज, ये सब जेबा एकर प्रयोग करे के चाहिए। खीरा उड़ा में तो जल बहुत भरपूर मात्रा में होला, तो ये खैला से एक तो शरीर के पोषण भी हो जाला, जितना भी हमने का भोज्य पदार्थ के साथ है जो पोषण के तत्व मिलेला वो तो मिलवे करेला। साथे साथे ये होला कि हमने का शरीर में पानी की आपूर्ति भी
1: पर्याप्त मात्रा में हो जाए,
0: सुनिश्चित हो जाला। तो आवश्यकता ये बा कि हमने का यह समय में ज़्यादा भारी ना खाए के, बहुत लोग जो बा उनका खाए के आदत होला चढ़ा के, तो यह समय में थोड़ा ई एकरा से बाची, बहुत ज्यादा जे बा वो
1: अच्छा, बहुत ज्यादा बहुत लोग भोजन भट्ट होबे कर रखी, मिल जाए तो पते नहीं चले कि पेट के ठिकान कहाँ है, अब पेट है कि खेत है बुझेबे न करे, भरते चल जाखी, यार से बचे के चाहिए।
0: तो
1: हल्का खा, सुपाच्य खाना खा,
0: बच्चे
1: वाला गरिष्ठ ज्यादा भोजन भी नहीं करे के चाहिए,
0: और हल्का खाई और इस तरह से खाई कि जोन जे बा वो पच जाए, जलिए जे भोज्य पदार्थ बा जो में पानी के आपूर्ति हो सके ओकर ज्यादा उपयोग करे के चाहिए, तभी जे बा हमने का
1: बचाव हो सके,
0: बचाव हो सके। आनंद भाई, अब समय बा कि हमने का एगो गीत सुने के।
1: हाँ?
0: आज के कलाकार बनी विष्णुकांत पाठक तरुण,
1: सुने
0: के वहां से ई लोक भजन
1: सुना जाए।

0: वाह वाह, ई हलखी विष्णुकांत पाठक तरुण। उदय भाई, हमारा मन है कि एक गीत फिर लगले इनका से सुन लेल जाए,
1: सुने के
0: सुनल जाए।

0: ई हलखी विष्णुकांत पाठक तरुण, इनका से हमने अभी लोकगीत सुन रियल। अब
1: हाँ
0: समय हो रहा है एगो प्रायोजित कार्यक्रम के, सुनल जाए प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: सुने क्यों
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश। ममता का आंचल ये कार्यक्रम है और आज इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारियां अगर हों तब भी बच्चा नहीं होता है। हमने कहा कि आज इस कार्यक्रम ममता का आंचल कार्यक्रम जो है उसमें ये चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारी अगर हो जाए, जैसे हाँ बता देते हैं, जैसे थायराइड, चीनी, मोटापा, इस तरीके की बीमारी अगर हो जाए तो क्या बच्चा होने में परेशानी होती है या बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर श्रद्धा से आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, समय नहीं गंवाते हुए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बताते हैं और सीधे सीधे डॉक्टर श्रद्धा को बुलाते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट करें, 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। इम्पोर्टेंट है आज का विषय बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं है। डॉक्टर श्रद्धा ने आज ये चर्चा की और हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें पहुंचा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर श्रद्धा आपका आज के हमारे इस ममता का आंचल कार्यक्रम जो है इसमें।
4: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, क्या सामान्य यानी कि अन्य मेडिकल डिसऑर्डर्स भी कारण हो सकते हैं निसंतानता की। सबसे पहले तो जान ले निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले एक साल से प्रयास कर रहे हैं बच्चा और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है,
3: जी।
4: ऐसे दंपति को निसंतानता कहा जाता है कि वो निसंतान दंपति।
3: हाँ, हाँ।
4: और ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है।
3: आज

0: जो हमने ये हुक लाइन दिया है कि क्या साधारण बीमारियां भी बच्चा नहीं होने का कारण बन सकती हैं, जिसमें थायराइड को हमने पहले नंबर पर रखा, इसके बारे में बताइए थोड़ा।
1: थायराइड एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। मेरे पास अक्सर ऐसे भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि कभी थायराइड का टेस्ट हुआ, बोलते हैं हाँ हुआ तो है लेकिन हम दवाई नहीं खा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खा रहे, तो बोलते हैं कि अगर खा लेंगे तो हमको आदत हो जाएगा और जिंदगी भर खाना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ में ये बताना चाहती हूँ, अगर थायराइड है तो आपको दवाई अवश्य खाना होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में जो थायराइड की कमी है
0: जी,
1: उस दवाई से ठीक होगा। और अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होंगी, जिसमें से एक बड़ा दिक्कत है कि आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा, क्योंकि थायराइड वो हार्मोन है जिसके कारण अंडाशय औरत का, अगर वो कम है तो अंडे का क्वालिटी घटता है
0: जी।
1: ना केवल अंडे का क्वालिटी घटता है, उस औरत में अंडे की जो संख्या होती है वो तेजी से घटते जाती है। यानी कि आजकल बहुत देखा गया है कि कम उम्र में ही एक औरत का मासिक खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका अंडा खत्म हो जाता है। और एक बड़ा कारण होता है कि थायराइड
0: जी,
1: तो थायराइड अंडा के, एक औरत के अंडाशय में जो अंडा होता है उसके क्वालिटी को भी मेंटेन करता है और उसकी संख्या को भी मेंटेन करता है। साथ ही थायराइड वो हार्मोन है जिससे हर महीने औरत में जो अंडा फूटता है उसमें थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही जब बच्चा बनता है और नली से, बच्चेदानी का जो नली से गर्भाशय में जब आता है और जब चिपकना होता है, उस समय भी थायराइड ही हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है।
0: ये तो बहुत बड़ी बात
1: है। इसलिए कोई भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपके, आपको बीमारी है तो आप दवाई अवश्य लें। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो बेहतर है आप थायराइड, चीनी का अपना जांच कराएं, मोटापा कम करें, बल्कि रूबेला जैसा भी बीमारी का अपना जांच करा लें। समझ रहे हैं? अगर आप आज जांच कराएंगे तो आपको, जांच करा लेंगे और चीज को कंट्रोल में ले आएंगे तो बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सही समय पे इलाज कराएंगे तो आपको निसंतानता से भी जूझना नहीं पड़ेगा।
0: बहुत बड़ी बात आज की जो बात कही थी वो ये था कि साधारण बीमारियां भी कभी कभी बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करती है, और खास करके वैसे दंपत्ति जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि थायराइड एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपको बच्चा नहीं होने के लिए। बड़े बुजुर्गों, अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई कि अब बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास भेजना है, और अब थायराइड की जांच भी करानी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर श्रद्धा से हमारी बातचीत चल रही है। IVF एक जो साधन है ना बच्चा प्राप्त करने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। आसानी से बच्चा हो जाता है, और बच्चा नहीं होना सिर्फ एक बीमारी है, और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने अभी अभी कहा था कि ये बीमारी है और इसको ठीक किया जा सकता है। नंबर हम दे रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा का, बात कर लीजिएगा 9162-562266, 9162-562266। एक और बात, EMI पर इलाज होता है। EMI यानी टुकड़ों में पैसा देके आप अपना इलाज श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी, जहां से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जिनके सपोर्ट से, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं अपने पास के किसी चिकित्सक या निसंतान रोग विशेषज्ञ से भी आप दिखा लीजिए, कम से कम जाइए तो, और सही डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल डॉक्टर साहिबा, ये तो थायराइड की बात हो गई, चीनी शुगर इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम निसंतानता के बारे में बात करें और डायबिटीज के बारे में नहीं बात करें तो फिर ये बेईमानी होगी सबके साथ। डायबिटीज तो आप सबो को पता होगा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है
0: जी, जी।
1: और इसका भी बहुत सारा, शरीर के बहुत सारे अंग पे असर पड़ता है। चूंकि मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं निसंतानता के बारे में ही बात करूंगी
0: जी।
1: शुगर जो होता है ये प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत कराता है, औरत में तो दिक्कत कराता ही है, पुरुष में भी दिक्कत कराता है
0: जी।
1: पुरुष में जो है वो धात, कहते हैं धात पतला हो रहा है
0: जी।
1: एक्चुअली धात पतला होने का क्या मतलब होता है, जो शुक्राणु बनते हैं और जिसको, उसको जिस रास्ते से आना होता है
0: जी,
1: उस रास्ते से नहीं, वो उल्टा चला जाता है।
0: अच्छा।
1: और फिर वो उसके कारण दांत पतला होने लगता है।

0: और आप समझ सकते हैं इसके साथ इसके कारण पुरुष निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है।
1: अच्छा, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में ये समस्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जरूरी है आप सही खान पान करें, जंक फूड से दूर रहें, रोज व्यायाम करें और शुगर का इलाज कराएं। कोई दंपति जब इलाज के बाद उनको बच्चा, जिसमें दंपति खासकर औरत को अगर डायबिटीज हो और इलाज के बाद बच्चा ठहर भी जाता है
1: जी,
0: तब भी वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क होता है, यानी कि उस औरत को अधिक संभावना होती है कि मिसकैरेज, बच्चा खराब होने का। उस बीमारी में औरत का रक्तचाप बढ़ सकता है
1: जी,
0: बच्चे को खून कम जा सकता है, समय से पहले डिलीवरी कराना पड़ता है और कभी कभी अचानक से बच्चा पेट में खराब भी हो सकता है
1: जी, जी।
0: तो ये सारा सुनने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल कर लेती हैं या बच्चा प्लान करने से पहले ही आपने अगर शुगर कंट्रोल कर लिया है
1: जी,
0: तो आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चलेगा और इनमें से कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा,
1: कोई भी बीमारी नहीं होगी। आज विशेष बातों पर चर्चा हो रही है और आई थिंक कि पहली बार इस कार्यक्रम में साधारण बीमारियों को लेकर डॉक्टर श्रद्धा बात कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर समय आप इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। लेकिन ये जो बीमारियां हैं जिसमें दो की चर्चा, अभी थायराइड की चर्चा और शुगर की चर्चा हुई, अभी और भी बीमारी आएगी जो आप नजरअंदाज कर देते हैं लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने की वजह से या आपकी अपनी वजह से, लेकिन वो आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर देता है। बहरहाल ये जानकारी हम दे दें वैसे दंपतियों के लिए कि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आ रहे हैं और IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान है, ये एक बीमारी है, अगर इससे आप निजात पाले तो आप भी माँ बन सकती हैं, आप भी बाप बन सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं 9162562266 9162562266। चुप्पी को तोड़ना है अब, हाँ संकोच नहीं करना है और इस नंबर का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आप चर्चा करती रही हैं पहले भी ओबेसिटी की, मोटापा की, है ना, आज थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये रोकता है संतान के लिए।
0: बिल्कुल, मोटापा अक्सर लोग नजर अंदाज कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं लोग कि ये भी कारण हो सकता है बीमारी का।
1: हाँ।
0: मोटापा भी एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है।
1: हाँ।
0: खासकर भारत में आजकल, बल्कि वेस्ट में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं और वो लोग रोज सुबह सुबह उठ कर के व्यायाम करते हैं, कोशिश करते हैं अपना वजन सही मेंटेन कर सके, बल्कि लेकिन हमारे देश में जहाँ कि हम वो देश हैं जहाँ हमारे यहाँ योगा की मतलब
1: जननी है,
0: जननी
1: हाँ।
0: जननी योगा हमारे ही देश से शुरू हुआ,
1: पूरे विश्व में
0: गया लेकिन हमारे देश के लोग ही इसको भूलते जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: और उसका फलस्वरूप ये है कि लोग में मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा का भी बहुत सारा असर होता है, शरीर के बहुत सारे अंग पे इसका असर होता है
1: जी।
0: लेकिन एक सबसे बड़ा असर जो होता है वो प्रेगनेंसी पे होता है, यानी कि औरत ना केवल औरत, पुरुष भी, अगर उनका वजन ज्यादा है, जिसको हम लोग BMI बोलते हैं, अगर 30 से ज्यादा है तो उस औरत को बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। उस औरत के शरीर में कितने सारे हार्मोन्स यानी कि केमिकल्स बनते हैं जिसके कारण उस औरत में अंडा नहीं बनता है। और अगर ये तो सब जान, अब इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सब लोग जान चुके हैं कि अगर औरत में अंडा बन के फूटेगा नहीं तो बच्चा कैसे ठहरेगा
1: ही नहीं। हाँ।
0: तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण निसंतानता भी बढ़ते जा रही है। अगर औरत और पुरुष दोनों जागरूक हो जाएं, न केवल पुरुष औरत पे सवाल उठाए कि तुम्हारा वजन ज्यादा है इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा है, पुरुष भी मिलके मदद करे, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलके अगर व्यायाम करते हैं, सुबह सुबह टहलने जाते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हैं, मोटापा कम करते हैं, जंक फूड्स खाना बंद करते हैं, रोज दिन फल सब्जी का अगर सेवन करते हैं
1: जी,
0: तो आराम से मोटापा कम हो जाएगा और ऐसे दंपति में बच्चा ठहरने में कम से कम दिक्कत नहीं होगा। और PCOD जैसी बीमारी, जो ये भी भारत में महामारी की तरह फैलते जा रही है, ये भी कम हो जाएगा।
1: कुल मिलाकर कहें कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर ले, खान पान ठीक कर ले और तरीके से जिंदगी को लीड करें, खुश रहें, फैमिली के साथ रहें।

0: मामला सुधर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, निसंतानता का इलाज क्या क्या है?
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था बताना। हाँ। क्योंकि आज हम निसंतानता क्या होता है ये भी बताएं, और सामान्य जो बीमारी है
0: जी,
1: वो भी कारण हो सकते हैं निसंतानता के।
0: हाँ हाँ।
1: जो इलाज है निसंतानता का, सबसे पहले हम लोग दवाई से शुरू करते हैं
0: जी।
1: पुरुष और औरत दोनों का कुछ बेसिक जांच करते हैं, कहाँ दिक्कत है। अगर वो दिक्कत पकड़ाता है तो उस चीज का इलाज करते हैं, नहीं तो फिर कुछ गोलियां देते हैं।

0: तो वो सही समय जो गोल्डन आर है उसको आपको समझना होगा, पकड़ना होगा और सही समय पे इलाज करने से आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। बसरते कोई दंपति जिसका शादी का 3-4 साल 5 साल ही हुआ है, अगर वो समझ जाता है कि अब उसको बहुत दिक्कत है और अगर उसको IVF की जरूरत है और अगर वो करा लेता है तो उसको बच्चा ठहरने की चांस 70-80% होती है। वनस्पत उस दंपति को जो पिछले 20 साल से निसंतानता से जूझ रहा है और सही समय पे बच्चा हो जाना वो भी बेहतर होता है क्योंकि उसे जितना स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त समय नहीं है कि ज्यादा बातचीत हो सके। फोन कीजिए, खूब फोन कीजिए, सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे और फिर उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। बड़े बुजुर्ग भी ख्याल रखिए अपने बच्चों का और जो चीजें कही गई हैं उस पर अमल कीजिए। IVF बच्चा प्राप्त करने का सबसे सशक्त साधन है, माध्यम है। नंबर नोट कीजिए डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266, 9162562266। थैंक यू श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लोगों के लिए लाने का मौका दिया। तो चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा, नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिखना पहाड़ी, पटना 4।
2: उदय भाई, अभी हमने सुन रहा है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। एक साथे चौपाल के भी समय समाप्त हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद खेती गृहस्थी के संबंध में बात विचार कर जाए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: उदय भाई, खेती किसानी के काम के साथे साथ यदि रोजगार के या कहल जाए कि आमदनी बढ़ावे के कुछ और साधन भी करल जाए जो कि किसी खेती किसानी के साथे करल जा सके है, तब आमदनी के नया स्रोत प्राप्त करल जा सके है, अच्छा आमदनी प्राप्त कर जा सके है। ऐसा सब काम में पशुपालन, पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय तो है ही है, मधुमक्खी पालन भी एगो ऐसने व्यवसाय है जो कि हमनी किसानी खेती के साथ कर सके ही। मधुमक्खी हमनी के पौष्टिक और स्वादिष्ट मधु यानी शहद तो उपलब्ध करेबे करे है, एक साथ परागण और पर्यावरण संतुलन लगी भी बड़ी आवश्यक है। जैव विविधता भी एकरा से बढ़ा है। दुनिया के लगभग 70% प्रमुख खाद्य फसल परागण लगी मधुमक्खी और अन्य कीट पर निर्भर कर रहे। मधुमक्खी पौधा के प्रजनन में परागण द्वारा मदद कर रहे, जकरा से फूल, फल और बीज हमनी के प्राप्त हुआ है। जैव विविधता में भी मधुमक्खी के बहुत योगदान है। एकर बगैर पौधा के कई गो प्रजाति विलुप्त हो सके है जो कि सीधा सीधी खाद्य श्रृंखला के प्रभावित कर रहे। माने मानव जनित गतिविधि जैसे कि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा कीटनाशक के प्रयोग, वन के कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवास के नष्ट होवल मधुमक्खी के जीवन लगी बड़ी खतरा बन गए हैं। तो इस सब बात पर ध्यान देवे पड़त ताकि मधुमक्खी के जीवन बचल रह सके। एकरा लगी कि मधुमक्खी हमनी के आसपास रहे हमनी के मधु के आपूर्ति लगी जरूरी है, नहीं तो फिर मधुमक्खी नहीं रहत तो हमनी के शहद भी नहीं मिलत।
4: आनंद भाई, हमने की यहाँ आयुर्वेद में जो हमने के पद्धति चिकित्सा के जो पद्धति बा आयुर्वेद में मध के जे बा बहुत महत्व देवल गेल
2: बहुत बहुत।
4: और ई कहल गेल बा कि मध जे बा अमृत के समान बा, माने अमृत नहीं है जीवंत बा और शरीर खातिर वही जीवंत रूप में वो कार्य करेला। मध जे बा वो मधुमक्खी के माध्यम से ही हमनी सब जानतनी कि मधुमक्खी ही मध के स्रोत होला, जहाँ तहाँ से वो जे बा पत्ता के रस के जो जे अलग अलग तरह के पेड़ बा पौधा बा उकर रस के चूस के और फिर वो जे बा मधुमक्खी जे बा वो जमा करे ले और फिर जे बा वो हम मध से हमनी का उकर उपयोग करी ले शरीर खातिर भी और वो हमने खातिर उपयोगी भी काफ़ी बा स्वास्थ्य के।
2: मधुमक्खी पहले प्राकृतिक आवास में पावल जाए और प्राकृतिक

0: रूप से ही बस शहद इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब तो
1: जी
0: उदय भाई मधुमक्खी पालन के एगो व्यवसाय के रूप में अपनावे के भी व्यवस्था हो गया है। बक्सा ओकरा लगी रखल जा है, बक्सा रख कर करके मधुमक्खी पालन करल जा सके है। तो ई तुरी भी हमनी वो जो शहद है प्राकृतिक रूप से जो अमृत जरा कह रही हैं वो पावे लगी मधुमक्खी पालन करल जा सके है। देखो और कुछ जरूरी है कि मधुमक्खी जहाँ पनपे एकरा लगी अपन आसपास ऐसा पौधा और फूल के लगाना चाहिए जो कि रस से भरपूर रहे। अपन आसपास या बगीचा में हानिकारक रसायन कीटनाशक के प्रयोग कम से कम करे के चाहिए। मधुमक्खी और अन्य कीट के पिए लगी पानी के छोटा सोता जैसे कि कंकड़ पत्थर से भरल बर्तन रखे के चाहिए। गर्मी में तो मधुमक्खी के पानी के बहुत खोज करे पड़े है। इगुनी कुआं भीर या चापा कलतर मधुमक्खी के झुंड देखल जा सके है। यदि बहुत खोज करे पड़े है तो इगुनी कुआं भीर या चापा कलतर भी बहुत ज़्यादा करना संभव नहीं भी होवे तो खुला बर्तन में या खुला बाल्टी में या खुलल टब में पानी भर के रख देवे के चाहिए। तो ये बात भी बड़ी जरूरी है कि मधुमक्खी जैसन परागण करे वाला जीव या कीट के सहायता लगी ऐसा फूल लगावल जाए जकरा में भरपूर रस होवे आ मधुमक्खी के ज़्यादा खोजे लगी दूर नहीं जाए पड़े। हालांकि अब तो जैसे कहली कि मधुमक्खी पालन बक्सा में करल जा रहे हैं लेकिन पहले ये खाली अपन प्राकृतिक आवास में ही पावल जा रहा। आज भी अपन प्राकृतिक आवास बने थे मधुमक्खी के देखना एगो रोमांचकारी अनुभव है।
1: आनंद भाई, यह बा कि जे हमनी का मधुमक्खी के यदि पालन करते हैं अपना स्तर से, तो ओकर प्रयास ही करे के चाहिए कि छोट स्तर पर ही करी। और पहले
0: हाँ,
1: जे बा
0: शुरुआत मैंने शुरू से
1: एक
0: की
1: हाँ
0: 8-10
1: हाँ
0: बक्सा से कहीं जा
1: आठ
0: सके।
1: दस बक्सा से हमनी के ओकरा के करे के चाहिए। और सामान्य तौर पर 10 बक्सा से करे में हमनी के 35 से 40 हज़ार रुपया के आसपास
0: हाँ, ज्यादा
1: वही कर
0: खर्च नहीं आवे।
1: ज़्यादा खर्चा ना आवेला। तो ऐसे कहे कि बहुत चीज़ में जानकारी की आवश्यकता होला, तो धीरे धीरे जब रुआ कैल शुरू करे तो ओकरा बारे में जानल भी आदमी शुरू करेला, और तब जेबा ज्ञान भी बढ़ेला, करे के ढंग भी बदल जाला, तब ज़्यादा लाभ होला। क्योंकि कोई भी चीज़ में जब तक रुआ ओकरा अंदर भीतर घुसेम ना, तब तक जेबा ओकरा के बारे में बहुत बढ़िया से समझेम ना, जानेम ना। ऐसे आवश्यकता होला कि हमनी का छोट स्तर पर ही शुरुआत करी। और वार्षिक रख रखाव लागत भी एमें यदि हमनी का छोट स्तर पर करे तो 500 से 1,000 रुपया और
0: आराम
1: ओकरा
0: से।
1: ओकरा रखाव में होला। एकरा अलावे सरकारी स्तर पर भी बहुत ही प्रशिक्षण की व्यवस्था कैल जा
0: बिल्कुल
1: रहल
0: बिल्कुल
1: बा
0: बिल्कुल
1: कई जगह पर। जे जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ, फिर प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ समय समय पर यह बारे में जानकारी भी दियला। और छप्पल छप्पल किताब भी आवेला एक और।
0: हाँ,
1: हाँ तो
0: पर्चा
1: कितु
0: पंपलेट
1: कितु
0: जे भी
1: हाँ
0: कह
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सब भी मिले जरा में
1: हाँ
0: जानकारी के बात रहे है।
1: तो ओकरा में यदि हमनी का ओकरा से यदि अपन ज्ञान बढ़ाई और धीरे धीरे एकरा के धीरे धीरे शुरू करी, तो हमनी का ज़्यादा लाभ।
0: बढ़िया लाभ कमा सके, मधुमक्खी पालन कर सके आदमी। बात तो सही कलखी उदय भाई। हमारा मन कर है कि यह बात पर अपने के एक गीत सुना दिए।
1: हाँ हाँ अरे
0: कलाकार हकी विष्णुकांत पाठक तरुण।
1: सुने क्या?

0: उदय भाई,
1: हाँ
0: ये हलखी विष्णुकांत पाठक तरुण।
1: हाँ
0: समय मिले तो इनका से आओ हमने गीत सुनम। बाकी बात कुछ ऐसा है कि जे जमीन है वो सीमित तो है ये है, ओकर उपज क्षमता भी अब कम हो रहा है, ओकर बहुत सारा कारण है। हमने एक बारे में आओ आगे बात करम। पहले एक बारे में विस्तार से जाने लगी, एक वार्ता सुनल जाए। भूमि को उर्वरा बनाए रखने के उपाय, वार्ताकार रखी डॉक्टर प्रियंका रानी।
1: सुनिए,
2: आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि की उर्वरता बनाए रखने के उपाय के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है। भूमि की उर्वरता मिट्टी की वह क्षमता है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और अनुकूल रासायनिक, भौतिक और जैविक परिस्थितियों का समर्थन करती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह निर्धारित करती है कि मिट्टी में पौधे कितने अच्छी तरह से बढ़ेंगे और उपज कितनी होगी। अब इस भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न उपाय जैसे जैविक तरीका, संतुलित खाद एवं उर्वरक का उपयोग और मृदा संरक्षण तकनीक इत्यादि को अपनाकर भूमि की उर्वरता बनाए रख सकते हैं। जैविक तरीका में हम विभिन्न जैविक खाद का उपयोग जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट और फसल अवशेषों का उपयोग करके मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया जा सकता है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और

पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। साथ साथ विभिन्न जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फॉस्फेट और पोटास सोलिबलाइजिंग सूक्ष्मजीव इत्यादि का इस्तेमाल करने से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। हरी खाद, कुछ खास पौधों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। ढैंचा, मूंग और अन्य हरी फसलों को उगाकर उन्हें मिट्टी में मिला देने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। फसल चक्रण में एक ही भूमि पर एक ही फसल को बार बार बोने के बजाय अलग अलग फसलों को बारी बारी से बोना चाहिए। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और कीटों और अन्य बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देना। स्वस्थ मिट्टी सूक्ष्म जीवों से भरी होती है जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। उर्वरकों का स्मार्ट उपयोग, मतलब संतुलित उर्वरक का उपयोग करने से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक दोनों का उपयोग किया जाता है। खाद जहां मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व प्रदान करती है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, और रासायनिक उर्वरक मिट्टी को तेजी से पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। लेकिन इनका लगातार एवं असंतुलित उपयोग मिट्टी की संरचना और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना जुताई वाली खेती। जुताई से मिट्टी की संरचना को नुकसान होता है, इसीलिए बिना जुताई वाली खेती करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसल अवशेषों को न जलाना। फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं और जलाने के समय काफ़ी उच्च तापमान होने की वजह से वहां की मिट्टी की नमी, सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें जलाने के बजाय मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। मल्चिंग विधि में मिट्टी को पत्तियों और अन्य जैविक पदार्थों से ढकने से मिट्टी की नमी तथा तापमान संतुलित रहता है और खरपतवार भी कम होते हैं। कृषि रसायनों के उपयोग से बचें। विभिन्न प्रकार के कृषि रसायन जैसे उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी इत्यादि का उपयोग मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। जल प्रबंधन, मिट्टी में पर्याप्त जल की उपलब्धता भी मिट्टी की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना। इसे नियंत्रित करने के लिए मृदा संरक्षण तकनीक जैसे कि पट्टीदार खेती, आश्रय पट और भूमि का अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। इनके अलावा कुछ आधुनिक तरीके जैसे कि कंपोस्ट चाय, यह एक काला तरल सोना है। यह पर्यावरण के अनुकूल, प्रदूषण रहित और किफायती खाद है जिसे किसान कुछ खास रोगाणुओं से पौधों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह पूरी तरह से जैविक है और आप सभी इसे खुद भी बना सकते हैं बशर्ते कि आपके पास खाद हो। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, इसीलिए मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अच्छी चाय मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। यह पानी और हवा को अंदर जाने में मदद करके चिकनी मिट्टी को ढीला करता है। साथ ही साथ

0: रेतीली मिट्टी को पानी और पोषक तत्वों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। कंपोस्ट चाय में लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न कीटों और विभिन्न तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है, जिससे हम उचित उर्वरकों का चयन करके उनकी संतुलित मात्रा का इस्तेमाल कर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण करने से आपको अपनी मिट्टी की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है और आप अपनी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उचित कदम सही समय पर उठा सकते हैं। इस प्रकार हम सभी इन सभी उपायों को अपनाते हुए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं।
1: आनंद भाई, अभी हमने कई वार्ता सुनदरणी है भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उपाय। वार्ताकार रनी हो डॉक्टर प्रियंका रानी, धन्यवाद दिया हो यहाँ के। और सुने के वो गीत, कृषि गीत भाई विष्णुकांत पाठक तरुण केश्वर में सुने के।

0: वाह वाह वाह, धरती के देवता किसान भाई है, बढ़िया गीत है सही में। धरती के देवता किसान तो भाई ये है कि हम देखा पढ़ लिए भी हमने कि किसान जो है प्रकृति के जवान साधु है।
1: कल कल गए और हम तो कह जो यहाँ का कहनी है खैर देवता या वो तो मान लो अलग चीज बा, लेकिन वहाँ के श्रम के पसीना के एक एक बूंद जे बा वो हमनी खातिर जीवन के संचार
0: करे।
1: तो निश्चित रूप से एक बार फिर से धन्यवाद दिया विष्णुकांत पाठक तरुण जी के बढ़िया बढ़िया गीत सुनोने। समय हमनी के अब संपन्न हो गई बा चले के।
0: नमस्कार उदय भाई।
1: नमस्ते आनंद भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस

0: में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है, इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश भर के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से किए वादे पूरा कर रही है।
3: रोजगार मेला के तहत आज देश के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा जो की थी देख रहा हूँ लगातार मतलब और उसमें 51,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किया देश के वासियों से उस पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना बधाई देते।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बनेगा। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
4: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, यह हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और AI ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी IT डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम AI के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
1: श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बक्सर के प्रथम सांसद महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6th चरण में पंजाब के IIT रोपड़ के 60 चयनित युवा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर IIT रोपड़ के चयनित युवाओं का जत्था पहुंचा। IIT पटना के नोडल अधिकारी डॉ. सतीन्द्र कुमार और कृपा शंकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
6: मैं दूसरी बार बिहार आई हूँ, मैं पहले पटना साहिब जाके आई थी, तब मैं काफी छोटी थी, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा है। कमिंग फ्रॉम IIT रोपड़ इन अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द कल्चरल हेरिटेज,
5: युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार दौरे पर आए प्रतिनिधियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और सामाजिक जीवन से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को

0: को सरकारी बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पारदर्शी होगी। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के प्रखंड के पंचायत में होगी। पुरुष शिक्षकों का गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला किया जाएगा। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,711 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की आज संपन्न वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
3: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए है, दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कुलपति महोदय से वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
2: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और अन्य छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: भाकपा माले ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन किया।

घोषणा की है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 मई को पटना में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों की असली समस्याओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर टाटानगर थावे एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया जीएमसीएच अस्पताल रोड में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहरसा जिले के सभी 10 प्रखंडों के चिन्हित स्थलों पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक महीने में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे, जिससे जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जिले में भारत की जनगणना 2000

0: 27 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचें, तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सहरसा जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग ना करें। जिले में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सहरसा जिले के महिषी अंचल कार्यालय में कार्रवाई करते हुए टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी और उसके निजी सहयोगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर रसीद काटने के नाम पर 16,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सहरसा पुलिस द्वारा कोशी क्षेत्र में जनवरी 2026 से 8 मई 2026 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 448 तस्करों एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस दौरान लगभग 2,92,64,000 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ एवं शराब बरामद किए गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन पंचायत में जीविका हाट का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह जीविका हाट सप्ताह में 2 दिन संचालित किया जाएगा, जहां जीविका दीदियां ताजी सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करेंगी। बीते दिनों अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने सहरसा जिला एथलेटिक्स मीट के 41वें संस्करण का उद्घाटन मशाल प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 370 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 10 से 13 जून 2026 तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे जनजातीय करिमा उत्सव पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य भर में जनजातीय करिमा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 25 मई तक चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सम्मान देना, उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले की थीम पर आधारित यह अभियान राज्य के 24 जनजातीय बहुल जिलों में चलाया जा रहा है।
2: राज्य के 24 जनजातीय बहुल जिलों के 74 प्रखंडों के 771 जनजातीय गांवों में शुरू किए गए इस अभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की

0: योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गांवों में जबकि सीवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के थारू बहुल जनजातीय इलाकों, कटिहार के 13 आदिवासी बहुल गांवों, भोजपुर के बिहिया और शाहपुर प्रखंड के 34 गांवों, मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखीसराय, बक्सर, अररिया और सुपौल समेत अन्य जिलों में भी शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जा रहा है। गरिमा उत्सव के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से खालिद रशीद।
1: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुरूप अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार और देश के एनडीए के सरकार निरंतर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए निरंतर कार्य कर रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धाराओं में जब तक नहीं जोड़ा जा सकता है तब तक किसी विकसित राज्य और विकसित देश की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी अनुसूचित जाति समाज के लिए भी और अनुसूचित जनजाति समाज के लिए लगातार निरंतर जो कार्य की जा रही है। एसटी समाज के लोग, वो एसटी समाज को और क्या क्या हम सुविधा भारत सरकार के माध्यम से जो गाइडलाइन है उसके आधार पर बिहार सरकार दे सकती है, हमारा विभाग दे सकती है, उसको कैसे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, उस समाज के लोग के भाषा के ऊपर, उस समाज के लोग के शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में कैसे हम सामाजिक समरसता बना सकते हैं। कहीं पर वो समाज के लोग विलुप्त जैसे होती जा रही कहीं कहीं, तो विलुप्त नहीं हो उनकी संख्या कैसे हमारे साथ आवे, और कहीं समाज की छोटी संख्या में तो हम उसको विकास के और समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़, इस पर भारत सरकार निरंतर कार्य कर रही है और बिहार सरकार भी कार्य कर रही है।
1: श्री रोशन ने कहा कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण की थारू जनजाति को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है।
2: आप 24 ऐसा प्रखंड है जहां हमारी विभाग ने अलग से एसटी समाज का, जहां समाज की संख्या हम लोगों ने चिन्हित किया है। आप चले जाएंगे बेतिया में, वहां पूरा इलाका ही आपका थरुहट का है, जो उसका अलग से हमारी मंत्रालय ने एक बजट हम लोगों ने बनाया है और उसका अलग से बजट का प्रावधान करके उसको विकास के लिए हमने 30 करोड़ रुपया उस थरुहट क्षेत्र के विकास के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे विकास हो, उसकी अलग से विद्यालय की व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां काम कैसे हो, सड़क कनेक्टिविटी कैसे हो, उस मोहल्ला जो हमारे एसटी समाज के लोग है जो थरुहट है उसको मुख्य धारा से हम कैसे जोड़े, बच्चों का जो कुपोषण का शिकार था वो बच्चे किस प्रकार शारीरिक रूप से जो है मजबूत कैसे हो, तो निरंतर कार्य कर रही हमारे विभाग और इस आधार पर हम लोगों ने 30 करोड़ रुपया अलग से भी फरवर्ट विकास क्षेत्र के लिए अलग से आवंटित दिया है।
1: श्री रोशन ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय के लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है।
2: पूरे बिहार 91 हमारा जो है अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जो संचालित है, उस 91 में 25 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जो है केवल अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक के हमारे एसटी समाज के बच्चे उसे पढ़ते हैं और रहते आवासित रहते हैं। उस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 11 तक के बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग कराना, उसकी खानाई, उनका ड्रेस, उनको डिजिटल क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, सारी व्यवस्था हमारी विभाग कर रही है। हमें खुशी है इस बार पूरे बिहार में जो रिजल्ट है, इंटर का रिजल्ट हो चाहे मैट्रिक का रिजल्ट हो, इंटर के रिजल्ट हमारे एसटी आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं और अनुसूचित जाति विद्यालय के छात्र छात्राएं जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपेक्षा अच्छा मार्क्स लाया हो और उस पर हमारी निरंतर कार्य भी हो रही है, हमारी प्राथमिकता भी है उसी प्रकार का है। तो मेरा मानना है, विभाग को मानना है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है तो उस समाज के लोगों को शिक्षित बनना अति आवश्यक है, संगठित होना आवश्यक है। तो मैं समझ सकता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारी विभाग निरंतर कार्य कर रही है और वो सामने हमने बताया तो बड़ी उपलब्धि।
1: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के निदान में राज्य सरकार की नई पहल सहयोग शिविर भी काफी प्रभावी साबित होगा।
2: जो सहयोग शिविर का जो कार्यक्रम ये बिहार के गरीबों के लिए वह किसी समाज के लोग क्यों नहीं हो, वह सभी को विकास

के मुख धारा में जोड़ने का, उनको आकांक्षाओं को पूरा करने का, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक बहुत बड़ा साधन है। पहले पदाधिकारियों के बीच में जो एक मेंटेलिटी बना हुआ था लटकाने और भटकाने का, अब लटकाने और भटकाने का समय खत्म हो गया। अब तो सरकार ने सख्त निर्देश दिया है, यदि कोई गरीब आदमी यह एप्लीकेशन देता है जो हम भूमिहीन है, हमको बास्किट पर्चा बसने के लिए दिया जाए, तो 30 दिनों के अंदर उसे बास्किट पर्चा वहां के अंचलाधिकारी देंगे। 30 दिन को अंदर यदि नहीं देते हैं तो 31वां दिन वह स्वतः पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। प्रथम 10 दिन में मुख्यालय से पदाधिकारी को नोटिस जाएगा कि आपके पोर्टल पर 10 दिनों से आवेदन पड़ा हुआ, आपने डिस्पोज नहीं। दूसरा उनको 10 दिन के बाद 20वां दिन जाएगा कि आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा उनको जो है 25वां दिन जाएगा कि अभी तक 25 दिन बीत गई, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब 30 दिन बीत जाएगी तो 31वां दिन उनको स्वतः विभाग के पद पर से निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये सहयोग शिविर का जो कार्यक्रम है, पूरे बिहार के लोग इसको तारीफ कर रहे हैं और लोगों को

0: दिन बीत गई, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब 30 दिन बीत जाएगी तो 31वां दिन उनको स्वतः विभाग के पद पर से निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये सहयोग शिविर का ये कार्यक्रम है, पूरे बिहार के लोग इसको तारीफ कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है, गरीबों को यह विश्वास हो गया कि एनडीए के सरकार ने जो वचनबद्ध हुआ था आज धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। और मैं इस बात के लिए बिहार के एनडीए सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार के योजना लाने से किसी भी समाज के जो गरीब लोग होंगे उनको इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा।
1: बिहार में जनजातीय गरिमा उत्सव सरकारी योजनाओं की शत प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने की दिशा में बेहद सराहनीय और संवेदनशील कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की पहल से जनजातीय समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज का सामूहिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म सरगम से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनुरोध में। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म खट्टा मीठा से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र के गाए। फिल्म मौसम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आबिदा परवीन के स्वर में गजल। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

आबिदा परवीन के गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत

0: आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई

0: टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट

में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर

0: reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तहत अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तवल्ले ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा कलीदी टेक्नोलॉजी तजारत सरमायाकारी तवानाई की यकीनी फराहमी कनेक्टिविटी तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुजाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और कयाम अमन की कोशिशों के तहत भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमेरिका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवियत मिलेगी। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तहत अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
2: anchoring that is the relationship between the president and the

0: आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नज़रिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स मुतल्लिका फरीक तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को

मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया।

0: डेट मतलब ड्रग अल्कोहल टोबैको एजुकेशन, ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ये ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4 से 6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से, तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथी के एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए, समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स,

0: होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और एल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और एल्काली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई, और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्ति

0: शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एलनीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट टेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
2: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
3: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था।

0: हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चर्चा करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में तिरंगे का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन

0: रखा है कि संकल्प प्रसिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें।

0: कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमरीका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी, इंटरनाइट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापू ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल, कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड़ कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड़ कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में

0: मानवीय प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांसकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्टुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।